एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 11, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के जून महीने की पहली तारीख। प्रातः के 5:58 हुए हैं। आज की सभा आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी चाईबासा है, 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की

24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में चार चार सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तीन तीन सीटें, झारखंड में दो सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में एक एक सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में एक एक सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहसों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। राजा जनक का नैराश्यपूर्ण ये कथन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो

तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तर्कस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनी वाणी में कहा, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम समर्पण। इसमें सबसे पहले आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम समर्पण। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

7:45 सुगम संगीत होगा, 7 बजे कार्यक्रम जोहार चाईबासा, 8 बजे समाचार प्रभात सुनिएगा, 8:15 मॉर्निंग न्यूज, 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार होते हैं, उसके बाद लोक संगीत का कार्यक्रम माटी की महक। विविधा ये कार्यक्रम होगा पूर्वाह्न 9 बजे, 9:30 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम रस रंजन में, 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा और 10:30 बजे से आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम होंगे।

सांध्यकालीन सभा में 5:02 पर कार्यक्रम अभिवर्तन, 5:05 पर होगा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम, जिसमें आप सुन सकते हैं एक ही गायक के गाए चंद गीत।

5:30 बजे खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा। 6 बजे मुख्य समाचार, 6:02 पर हो अखड़ा। 6:30 बजे युवाणी कार्यक्रम,

राशि 8 बजे रजनीगंधा कार्यक्रम होगा। 9:45 बजे समाचार संध्या का प्रसारण होता है। रात्रि 9 बजे न्यूज 8:09, 9:15 बजे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम होंगे। 10 बजे इस केंद्र से होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 बजे आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम सुरों के रंग में। रात 11 बजे हिंदी समाचार 11:05 पर इंग्लिश न्यूज। और आज की सभा संपन्न होगी रात्रि 11:11 पर। तो ये था आज का कार्यक्रम अभिवरण।

प्रातः के 6:45 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं राजेश चटर्जी।

जोहार चाई भाषा आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज कीजिए स्वीकार SB सिंह का प्यार भरा नमस्कार। बलमा कार्यक्रम का आगाज इस फिल्म के नगमे से। युगल स्वर हैं आशा भोसले और कुमार सानू के लिए।

किया गया फिल्म बॉबी का नगमा लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: परिवार जो तो बेटा क्रांति बेसरा अले नेहर में बोले नुकान परिस्थिति बोले सब वापस को रुआ
3: मोर नाम मंगल बोरा एक गाँव बारीगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है लोग आउ का जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रणबला देवी गाँव बारे भक्तो तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो हम बात हो जाए है
5: नितुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर में ना आया यापा में रियो तपा में रियो वाह बेटा निका
6: अन्य नितुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम गुमरे गुड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने कोड़ा।

0: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: अभी अलविदा मत कहो।

0: शामिन, इस नगमे के साथ ही समाप्त हुआ चाहता है आज का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। यह आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: सुनिए, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
5: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और

0: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी दो सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा।
1: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
2: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए

0: संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
1: का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी गए। कागिसोर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला।

0: मेहता ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार, जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 8 जून तक चलेगी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया। 18 जून को होगा मतदान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे देशव्यापी खेत बचाओ अभियान का आगाज। झारखंड समेत देश भर के किसानों तक पहुंचाया जाएगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। राज्य में अवैध खनन और नशीले पदार्थों के कारोबार पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जताई चिंता। राजस्व और पर्यावरण को हो रहे नुकसान के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों के लिए 6 जून तक के लिए जारी किया अलर्ट। 3 और 4 जून को 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और जामताड़ा में आयोजित 20वीं राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता का हुआ समापन। फाइनल में रामगढ़ की टीम को हराकर रांची ने विजेता ट्रॉफी पर जमाया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
1: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: हजारीबाग जिले में अवैध खनन, लॉटरी और नशीले पदार्थों के बढ़ते कारोबार पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और स्थानीय सांसदों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे राजस्व और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है।
2: युवा नशे की लत में आकर वो अपना जीवन बर्बाद करते हैं, लेकिन दूसरी ओर ये भी लगता है जिस तरह से सरकार को युद्ध स्तर पर इन क्षेत्रों में काम करना चाहिए शायद नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों का कुछ और ही मंशा है, चीज ध्यान में रखते हुए करते हैं। जैसे आपने बालू कोयला तस्करी की बात की तो ज्यादा ध्यान इसे और होता है। लॉ एंड

0: और जो नशा खुरानी की बात है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते।
1: रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ आज ओरमांझी क्षेत्र को बड़ी सौगात देंगे। वे 1,25,00,000 रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास को गति मिलेगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण FAQ जारी किए हैं। इसके तहत मतदाताओं और अधिकारियों के लिए 30 जरूरी सवालों के जवाब दिए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हर पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। रांची विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कल एक जागरूकता रैली निकाली। इसमें छात्रों और शिक्षकों ने लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान छात्रों ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू बिक्री पर रोक लगाने की मांग भी की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@eirnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@eirnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बोकारो के फुसरो में एक गर्भवती महिला की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार को घेरा है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने रांची में संवाददाताओं से बातचीत में आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अभिषेक बनर्जी को बेहतर इलाज के लिए झारखंड भेजने का आग्रह भी किया है।
2: हाथ तो तब हो गया बताइए, वो सांसद हैं और MP साहब जो इलाज कराने के लिए कोई हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ का जो हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वो तुरंत डिस्चार्ज करने का कहता नहीं नहीं नहीं सर हम नहीं रखेंगे। तो हमने निर्णय लिया है, हमने आग्रह किया है ममता दीदी से कि ममता दीदी जान माल आप लोग का सेफ नहीं है बंगाल में, आप इमीडिएट अभिषेक बैनर्जी को झारखंड भेजिए, मैं उनको सुरक्षा दूंगा और मैं समुचित इलाज करूंगा।
1: प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में निधन हो गया। वह 89 वर्ष की थी। 50 से 70 के दशक में हिंदी और मराठी सिनेमा को कई कालजयी गीत देने वाली सुमन जी ने मोहम्मद रफी सहित कई दिग्गजों के साथ सैकड़ों गाने गाए। उनके निधन पर देश की कई हस्तियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में 6 जून तक गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। 3 और 4 जून को आकाशीय बिजली गिरने तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों ने आम नागरिकों और किसानों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 20वीं राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। फाइनल मुकाबले में रांची की टीम ने रामगढ़ को हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि साइबर DSP अमित रविदास ने विजेता और उप विजेता टीमों को कप प्रदान कर सम्मानित किया। जामताड़ा जिला खो खो संघ के पदाधिकारी ने राज्य स्तरीय इस खेल प्रतियोगिता के संपन्न होने पर जामताड़ा जिला प्रशासन, खेल निदेशक एवं खेल प्रेमियों को धन्यवाद दिया।
3: तमाम खिलाड़ी बहुत अच्छी मेहनत किए, अच्छे खेल खेल का प्रदर्शन किए, विशेष करके गांव की जो बच्चियां हैं वो उठ करके आई, उनके जो प्रतिभा है उसको निखारने का उसको समय मिला, वो जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी

0: मैदान में ये डे बोर्डिंग रांची और रामगढ़ के बीच में सीधा मुकाबला हुआ। दोनों टीम जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया परंतु अंत में रांची का जीत हुआ।
1: और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने आईपीएल 19 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है आरसीबी फिर चैंपियन, तब 18 साल लगे अब 12 महीने। हिंदुस्तान के शब्द हैं आम आदमी बनकर रांची की सड़कों पर उतरे मुख्यमंत्री। प्रभात खबर की सुर्खी है एसआईआर में जन्मतिथि और निवास से जुड़े दस्तावेज मांग सकता है आयोग। और दैनिक जागरण के अनुसार आज रिम्स के नर्स व कर्मी करेंगे कार्य बहिष्कार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 8 जून तक चलेगी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया, 18 जून को होगा मतदान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे देशव्यापी खेत बचाओ अभियान का आगाज। झारखंड समेत देश भर के किसानों तक पहुंचाया जाएगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। राज्य में अवैध खनन और नशीले पदार्थों के कारोबार पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जताई चिंता। राजस्व और पर्यावरण को हो रहे नुकसान के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों के लिए 6 जून तक के लिए जारी किया अलर्ट। 3 और 4 जून को 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और जामताड़ा में आयोजित 20वीं राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता का हुआ समापन। फाइनल में रामगढ़ की टीम को हराकर रांची ने विजेता ट्रॉफी पर जमाया कब्जा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉव पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी चाईबासा है। पेश है लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम माटी की महक, जिसमें आज हम लेकर आए हैं उरांव लोकगीत कलाकार हैं रमेश लकड़ा और साथी।

अभी आप सुन रहे थे माटी की महक के अंतर्गत उड़ाव लोकगीत रमेश लकड़ा और साथियों के स्वर में। ये आकाशवाणी का चैवासा केंद्र है FM बैंड के 101.7 MHz पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रमेश दास। श्रोताओं, आज 1 जून है। आज विश्व दूध दिवस है। विश्व दूध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।

0: श्रोताओं, आज हम विविध कार्यक्रम में बातें करेंगे शिक्षा पर। जी हां, नेल्सन मंडेला का प्रसिद्ध कथन है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। और खासकर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का महत्व और लोगों को शिक्षित करने में हमारे कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो जी जान से जुड़े हैं।
1: गाते सिखाई दे, लेते सिखाई दे यार, पढ़ते सिखा।

0: आज हम बातें कर रहे हैं शिक्षा पर। जी हाँ, चलंत साइकिल लाइब्रेरी से बदलने की कोशिश, गांव की शिक्षा की तस्वीर। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के मध्य विद्यालय आसनपाट मझगांव में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने अपनी अनोखी पहल से ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में नई उम्मीद जगा दी है। शिक्षक विमल किशोर बोईपाई द्वारा शुरू की गई चलंत साइकिल लाइब्रेरी स्व अध्ययन केंद्र यानी मोबाइल साइकिल लाइब्रेरी के साथ सेल्फ स्टडी सेंटर अब बच्चों में पढ़ाई के प्रति नई ललक और आत्मविश्वास पैदा कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर छुट्टियों के दौरान बच्चे पढ़ाई से दूर होकर दिन भर खेल कूद में व्यस्त हो जाते हैं। घरों में शैक्षणिक माहौल और संसाधनों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। ऐसे माहौल में शिक्षक विमल किशोर बोईपाई की यह पहल शिक्षा को बच्चों के घर और मोहल्लों तक पहुंचाने का माध्यम बन गई है। साइकिल पर किताबें, अध्ययन सामग्री और सीखने का संदेश लेकर बच्चों को गांव में घूम घूम कर पुकार लगाती निकली या साइकिल लाइब्रेरी अब बच्चों के बीच आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। इसका असर यह है कि जो बच्चे पहले छुट्टियों में केवल खेलते नजर आते थे, वही अब अपने शिक्षक को फोन कर ऑनलाइन पढ़ाई कराने की इच्छा जता रहे हैं। यह बदलाव बच्चों में विकसित हो रही आत्मप्रेरणा और सेल्फ स्टडी के प्रति जागरूक होती भावनाओं को दर्शाता है।
1: साइकिल का जो लाइब्रेरी का मेरा कॉन्सेप्ट आया, मैं सरकार से सीखा। मैं देखा कि ग्रामीण परिवेश में या कहीं भी खास करके लड़कियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है, दूर दराज में स्कूल है, तो सरकार ने बच्चों को खास करके 8 क्लास से हाई स्कूल में जाने के लिए साइकिल प्रोवाइड कराया है। और बच्चियां आज और बच्चे सभी कोई जब हाई स्कूल में जाते हैं तो वो लोग साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने देखा अपने पोषक क्षेत्र में गांव-गांव में स्कूल है, टोला-टोला में स्कूल है, किंतु बहुत सारे बच्चे किसी भी कारण से नहीं आ पाते हैं, रेगुलर नहीं हो पाते हैं, कुछ खिजित हो जाते हैं या घरेलू कार्यों के चलते वो स्कूल में नियमित नहीं रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा उपाय लगाया जाए कि जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं स्कूल, उनको उनके घर पर ही लीडर बच्चों के द्वारा शाम के वक्त यदि थोड़ा बहुत शिक्षा से जोड़ा जाए या दिन भर में स्कूल में जो कुछ भी गतिविधियाँ हुई उनसे संबंधित पाठ या गतिविधि या वीडियो कॉन्टेंट्स आदि उनके मित्र के द्वारा ही उनके घर तक शाम को पहुँचाया जाए तो उनका रुझान स्कूल के प्रति बना रहेगा। इसी सोच के साथ हमने साइकिल लाइब्रेरी आरंभ किया। तो इसमें मैंने देखा कि भाई एक आइडिया मैंने लिया जो फेरी वालों से, वो फेरी वाले लोग चोंगा लगाए रहते हैं, पावरोटी बिस्कुट लेकर के गली गली घूमते हैं और लोग बच्चे लोग या ग्रामीण भी उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो मैंने सोचा जब चोंगा लगा करके भोजन के तलाश में या किसी भी आवश्यकता चीज़ को खरीदने के लिए आम जनमानस से लेकर के बच्चे भी वहाँ दौड़ के जाते हैं, तो क्यों ना इसको ऐसे ही एक अट्रैक्टिव बनाया जाए। वही चोंगा मैंने इस्तेमाल किया है और उसमें जो अनाउंसमेंट वगैरह है बच्चों के मरकज की रिकॉर्डिंग करके मैंने उस पर फिट करके रखा है। ब्लूटूथ से लोग कनेक्ट कर लेते हैं बच्चे, और कोरोना के समय में भी मैंने बहुत काम किया था। वही मोबाइल जो मैं दे रखा था संसाधनहीन बच्चों को जिनके मरकज हमारा ऑनलाइन

0: चलता था, तो उनके द्वारा उन लोग उसमें जोड़ लेते ब्लूटूथ में, और एक बार 4 बजे 3 बजे जैसे आसपास से लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं। फिर किसी एक निश्चित जगह पे जो मेरे माता समिति या प्रबंधन समिति के सदस्य हैं उनके निगरानी में, उन्हीं के अंगना में या उनके अगल बगल जहाँ छायादार है, तो इसी जगह पे बच्चे एकत्रित होते हैं। उसके बाद किताब से रैक में अनुसार अलग अलग छोटे छोटे पत्रिकाएँ लगे हुए, बाल पत्रिकाएँ हैं, गणित से संबंधित, पजल से संबंधित, जैसे कुछ गतिविधि वाला कोई उत्सव है बोलना चाहिए, उस रैक पे वहाँ से बच्चे लेते हैं और रजिस्टर एक मेंटेन करके मैं रखा हुआ हूँ। तो उसमें बच्चे लोग कौन कितना पढ़े, किस चीज़ को पढ़े, कौन सा पार्ट को देखे, उसको वो लोग मैं मॉनिटरिंग कर लेता हूँ। तो दूसरे दिन कॉफ़ी दे करके ऐसे प्रार्थना सभा में क्लैप करके, आज बच्चे देखिए ये बच्चे ये किताब पढ़ा, वो कैसे पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत प्रार्थना सभा में वो सुना देता है, तो बच्चों का भी मनोबल बने रहता है और मेरा भी हौसला बने रहता है।
1: शिक्षक विमल किशोर भोईपाई के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए मोबाइल फोन और टैबलेट जैसे उपकरण भी अपने पैसे से मुहैया कराए हैं, ताकि ऑनलाइन शिक्षा की बाधा बच्चों को ना हो। ग्रामीण परिवेश में आज भी कई अभिभावक घर पर पढ़ाई और सेल्फ स्टडी के महत्व को पूरी तरह नहीं समझ पाते। सरकारी विद्यालयों के प्रति नकारात्मक सोच, उदासीनता और असहयोग के कारण शिक्षक की कक्षा में की गई मेहनत कई बार अधूरी रह जाती है। वहीं दूसरी ओर एक सरकारी शिक्षक को शिक्षण कार्य के साथ कई गैर शिक्षक शैक्षिक दायित्व भी निभाने पड़ते हैं। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद विमल किशोर भोईपाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाने के लिए चलंत साइकिल लाइब्रेरी स्वाध्ययन केंद्र की शुरुआत की, ताकि किताबें सीखने की आदत और पढ़ाई का माहौल उन बच्चों तक लगातार पहुंच सके जहां संसाधनों और प्रेरणा दोनों की कमी है।
0: इसमें ऐसा है, स्कूल में लाइब्रेरी तो है ही, प्रत्येक विद्यालय में सरकार के द्वारा दी गई पुस्तकों का एक पुस्तकालय है ही, वहाँ बच्चे पढ़ते ही प्रत्येक विद्यालय में पढ़ते हैं। तो अमूमन मैं ग्रामीण परिवेश में देखता हूँ कि शिक्षक जो मेहनत करता है विद्यालय पे, वो घर पे बच्चों का दोहराव नहीं हो पाता है, चाहे वो अभिभावकों का उदासीनता बोले या जागरूकता का कमी बोले। तो इस वजह से क्या होता है कि जो पाठ यदि किताब खुलता है तो स्कूल में ही खुलता है। तो मैंने सोचा कम से कम खेल खेल में ही सही, या कहानी के माध्यम से सही, या बच्चा का रुचि के अनुसार यदि पुस्तकों को हम उनके अंगना तक स्वतंत्र रूप से प्रोवाइड कर देंगे, व्यवस्था कर देंगे, तो बच्चा कम से कम 40 मिनट भी, 1 घंटा भी उन किताबों को देखता है, पलटता है, तो बहुत कुछ सीखता है। तो इसी भावना के साथ, इसी सोच के साथ मैंने देखा कि बच्चे अभी एकदम नया टाइप का उनको लगा है, उन्हीं के रिकॉर्डिंग में उसमें जो भी है स्लोगन हुआ या बच्चों को बुलाने वाला हिंदी में स्थानीय भाषा हो में, उससे संबंधित कुछ बाल गीत सब भी मैंने उसमें फिट करके रखा है। तो एक उत्सुकता वाला माहौल गांव में भी हो जाता है, तो बच्चे एकदम जुट जाते हैं और खुशी खुशी वो लोग शाम के वक्त या उनके समय अनुसार, सुविधा अनुसार, या प्रबंधन समिति के सदस्य लोग बोलते हैं कि आज हम लोग उपलब्ध हैं, तो उनके अंगना में हमारी क्लासेस वहाँ लगती है। तो मैं देख रहा हूँ कि आज का भी जैसे मैं बात करूं तो आज 40 बच्चे जुड़े, शुरुआत में 29 बच्चे जुड़े थे, है ना, आज 40 बच्चे जुड़े। तब मुझको जो टैबलेट उसमें मैं दे रखा हूं, साइकिल में लोग लेके चलते हैं, तो टैबलेट अब कम पड़ने लगा है, तो उतना छोटा स्क्रीन उसका होता है, तो बाकी को आवाज़ भी शायद वहाँ नहीं पड़ पाता, तो उनके लिए एक बड़ा वाला थोड़ा ब्लूटूथ स्पीकर जैसे हमको व्यवस्था करना होगा। फिर भी मेरा उद्देश्य है कि बच्चे हमारा बोल पाए, समझ के साथ कुछ किताबों को पढ़ पाए, अभिव्यक्ति को कैसे और अच्छा सुंदर ढंग से व्यक्त किया जा सकता है, इन चीज़ों में भी वो यदि प्रांगत हो जाते हैं तो विद्यालय में जब वो रहेंगे तो अन्य बच्चों को भी वो बेहतर ढंग से गाइड कर सकते हैं। इसमें ऐसा है, स्कूल में लाइब्रेरी,
1: इस पहल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बच्चों में खुद से पढ़ने और सीखने की आदत तेजी से विकसित हो रही है। शिक्षक विमल किशोर बोईपाई का मानना है कि शिक्षक केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन मजबूत भविष्य के लिए बच्चों में खुद से पढ़ने की ललक होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी की यही आदत उन्हें आगे चलकर आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यदि अभिभावकों का भी सहयोग मिले तो बच्चों का सर्वांगीण विकास और अधिक प्रभावी हो सकता है। आने वाले समय में यह पहल न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी बल्कि गांव में पढ़ने की संस्कृति को भी मजबूत करेगी। विमल किशोर बोईपाई कहते हैं कि यह प्रयास कितना सफल होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन शिक्षा के लिए किया गया हर सच्चा प्रयास किसी न किसी बच्चे के भविष्य में एक दिन जरूर उजाला लाएगा।
0: हाँ, गर्मी की छुट्टी अभी लंबा है, बोलना चाहिए काफ़ी गर्मी भी है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि किताब स्कूल में बच्चों का खुलता है, घर में तो छुट्टी मतलब सभी प्रकार का छुट्टी। तो यदि मैं 20 दिन बाद 15 दिन बाद दोबारा स्कूल जाऊंगा तो देखूंगा बच्चा को जहां पर मैं छोड़ दिया था फिर वहीं से उसको फिर शुरू करना होगा। अधिकांश तब भूल जाते हैं। अभी मैं इसे देखता आया हूँ, अभी अपना सेवा इतिहास में अनुभव के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ कुछ जो जागरूक होते हैं गार्जियन, वो लोग अपने व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाते हैं घर में या कोई कोई ट्यूशन लगा देते हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा प्रायः अभाव ही रहता है। तो मैंने सोचा नहीं भाई, इनका पठन पाठन से लगाव रहे तो इससे पहले भी ऑनलाइन क्लासेस, साइकिल तो नहीं था, साइकिल वाला कॉन्सेप्ट इस बार है, लेकिन इससे पहले कोरोना समय में मैंने जो साधन विहीन जो बच्चे थे उनको 4 मोबाइल अपने तरफ से दिया था, उसी से हम लोग ऑनलाइन जुड़ते थे। तो कभी कभी विभागीय निर्देशानुसार हमें अलग अलग प्रतिनियोजन में भी रहना होता है, मसलन अभी जैसे जनगणना का काम हो, इलेक्शन का काम हो, इस सब में रखना ही पड़ता है, हम लोग लगते हैं। तो ऐसे दौरान हमारा जो विद्यालय से बाहर हो जाते हैं तो ऐसे समय मेरा जब ऑनलाइन बहुत काम करता है, स्कूल में मैंने अभी तो विभाग की ओर से लग गया है, ICT लैब बन गया है, लेकिन इससे पहले मैं अपना प्रोजेक्टर और लैपटॉप वहाँ पर स्थापित करके रखा था जिससे बच्चे ऑनलाइन हमसे जुड़ते थे। तो मैं कहीं भी प्रतिनियुक्त रहता हूँ तो भी कम से कम एक दिन का क्लासेस ऑनलाइन 40 मिनट या एक घंटा हम ले लेते हैं। तो उससे पठन पाठन का जो माहौल है वो बना रहता है और बच्चे भी नहीं उताते हैं, क्योंकि कोई बच्चे यदि एब्सेंट हो गए तो मैं उनको बोलता नियमित स्कूल आना है और मुझको देख रहे मैं ही डिप्रेशन के चलते किन्हीं कारणों से मैं भी विद्यालय नहीं आया, तो मैं खुद रेगुलर नहीं हूँ। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया कि नहीं, जिसमें मैं प्रतिनियुक्ति पे हूँ या अन्य कारण में हूँ या छुट्टी में हूँ तो कुछ भी थोड़ा सा ऑनलाइन ले लेते हैं, तो उनको भी लगता है कि नहीं सर भी हैं किसी न किसी रूप में हैं, तो वो भी अपने से स्वतः नियमित विद्यालय आते हैं और मेरे नहीं भी रहने से हम कहीं से भी उनसे जुड़ लेते हैं यदि नेटवर्क साफ देता है। कभी कभी मौसम खराब होते हैं तो ग्रामीण में थोड़ा सा क्षेत्र में नेटवर्क कभी इशू हो जाता है तो फ़ोन के माध्यम से मैं निर्देश दे देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों के बीच बेहतर अंडरस्टैंडिंग बच्चों के साथ बना हुआ रहता है। तो मैं भी गिल्टी नहीं फील करता हूँ कि मैं खुद नियमित नहीं हूँ स्कूल डिप्टेशन में, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि अरे मास्टर तो आता नहीं है अपने और हम लोग को रोज आने आने बोलता है, तो बड़ा ख़राब लगता है। लेकिन सरकारी गर्मी है, विभाग का आदेश मानना ही है, ये भी बहुत ज़रूरी काम है ना। तो इसमें क्या होता है कि नहीं, ऑनलाइन थोड़ा भी हम बच्चों से जुड़ेंगे तो उनमें भी बना रहेगा, नहीं सर भी किसी न किसी रूप में काम कहीं हैं, उतना व्यस्तताओं के बाद भी हम लोगों के साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं तो उनमें एक मॉरल सपोर्ट मिल जाता है। तो पढ़ने के लिए हम देखते हैं हमारा बच्चा एकदम कम से कम नहीं भी तो 80-82% नियमित रहता है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं किन्हीं भी कारण से नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए बेसिकली मैंने ये साइकिल वाला कॉन्सेप्ट सोचा कि बहुत सारा गरीबी के कारण, घरेलू काम के कारण बच्चा नियमित नहीं रह पाया, और ऐसे बच्चों के हमने प्रशासन आपके द्वार जो जैसे सरकार का चल रही योजना तो उसी से मैं भी प्रेरित होकर के क्यों ना शिक्षा आपके द्वार इस तरह से सोचा जाए। तो दिन भर में नहीं आ पाया तो लीडर बच्चे या अपना दोस्त जो है सर आज हम उनके यहाँ साइकिल ले जाएंगे बोलता है तो उनके अन्न में क्लास लगाता है। एक आध दो बार तो मैं भी अपने साथ बच्चों को लेकर के चलिए गार्जियन को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, आप बच्चे को हमारे यहाँ नहीं भेज पा रहे, मैं ही पूरा छात्रों को लेकर के आपके आंगना में आज हम लोग क्लास लगाएंगे। तो ऐसा एक दो बार मैंने

0: या तो अब वैसे नौबत नहीं आती है, बच्चे एक दो दिन गायब हो ही जाते हैं, नहीं बोल के नहीं, लेकिन एकदम गायब खाली नामांकित है, उसके बाद पूरा साल भर गायब, ऐसे मैं नहीं देख रहा हूँ जब से ये इनोवेशन मैंने किया है। हाँ, गर्मी
1: विमल किशोर बोईपाई जैसे शिक्षक शिक्षा जगत के लिए एक दिया है, जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी देने के काम में निस्वार्थ लगे रहते हैं। विमल किशोर जैसे शिक्षक की जरूरत आज भारत के हर एक स्कूल की जरूरत है, जो बच्चों को शिक्षा देना केवल अपनी ड्यूटी नहीं मानते, बल्कि इसे पहली प्राथमिकता बताते हुए इसे अपने सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी मानते हैं, और इसे पूरा करने के लिए हर विषम परिस्थितियों से लड़ने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि विमल किशोर का यह प्रयास गांव को एक शिक्षित और विकसित गांव के रूप में एक दिन जरूर बदलेगा। वहीं विमल से प्रेरणा लेकर अन्य शिक्षक भी अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था का रोने के बजाय वैकल्पिक रास्ता जरूर ढूंढेंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया।
0: देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी हम लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। हम लोग सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो ज्ञान के लिए भी पढ़ना होगा तो हम सबों को लगना होगा, इसमें सबों की सहभागिता बहुत जरूरी है, चाहे वो शिक्षक हो, बच्चा हो, या अभिभावक हो, या इससे संबंधित जो भी शिक्षा अधिकारी, समाज सेवी, NGO, तमाम लोगों को हम लोग को मिलजुल करके एक योजना बनाना होगा कि धरातल के बच्चे, उसमें भी प्रतिभा की कमी नहीं है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं, अभी शाम के वक्त में भी बच्चे वहाँ जुटे हुए हैं, तो लाइट का इशू है ही। तो इसी जगह मैंने जो ठेला सब में जो बैटरी छोटा वाला होता है उसको व्यवस्था करके रखा हूँ, तो मैं समझता हूँ सफिशियंट नहीं है, तो उसके लिए और भी व्यवस्था ऑल्टरनेटिव इसका करना होगा। दूसरी बात क्या है कि मोबाइल बच्चों को कैसे ही देना, वो खतरे से खाली नहीं है आज के डेट में, लोग समझ रहे हैं, इसमें भी बहुत सारा जागरूकता लाना है। तो मैं भी जब मोबाइल या टैबलेट एक दे के रखा हूँ साइकिल में जो रहती है, तो उसमें बच्चे जब क्लासेस कर लेते हैं तो जो भी उनके पास मोबाइल है और टैबलेट है वो शट डाउन करके उन लोग माता समिति या प्रबंधन समिति जो हमारा नामित है उनके लोग हैंड ओवर कर देते हैं। अमूमन आजकल हम लोग देखते हैं कि कोई शहर में भी और गांव के क्षेत्रों में भी एक मोबाइल लिया हुआ है, एकदम रोड किनारे, पुल पुलिया किनारे, एकदम देखने में लग रहे हैं क्या कॉन्टेंट देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, हम लोग समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा इसी तकनीक को लेकर के, इसी मोबाइल को लेकर के कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, दिन भर गेम खेल रहा है। तो मैंने उस चीज़ को बचाने का प्रयास किया कि नहीं, इसी चीज़ में, इसी मोबाइल के द्वारा हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। सामने प्रत्यक्ष रूप से यदि शिक्षक नहीं भी हो तो वो दूर दराज में रह करके आपके क्लासेस आपके साथ जुड़ सकते हैं। मैंने गार्जियनों का भी संबंध में कई बार अपना मीटिंग्स PTM जो हम लोग करते हैं उसमें बोले हैं, देखिए आज के डेट में सबों के पास मोबाइल है ही, अमूमन हम लोग 300 रुपये मिनिमम उसको डाटा भरने में लग ही जाता है, तो साल भर में देखिए कितना हो जाता है। काम हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, एक दूसरे का संपर्क में हेलो करने में, या फिर बहुत हुआ तो YouTube देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, लेकिन 300 रुपये तो जा रहा है। लेकिन आप यदि हमको थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, जो बच्चे सब कोई मेरे पास जो साइकिल लाइब्रेरी वहीं तो नहीं आ पाते हैं, तो कुछ बच्चा भी घर से भी जुड़ जाते हैं ऑनलाइन जिनके पास मोबाइल है, क्योंकि दिन को तो लोग अपना ले जाते हैं, तो शाम के वक्त कहीं भी मेहनत मजदूरी करके अभिभावक आते हैं, तो कम से कम बच्चे को जो लिंक मैं प्रोवाइड किया हूँ उसी से आप लोग भी जोड़े अपने सामने हैं, बच्चे को अपने सामने कैसे ऑनलाइन पढ़ता है, इसी को अपना मॉनिटरिंग में हम लोग यदि करेंगे, अभिभावक यदि हमको इतना भी साथ देंगे, तो हम समझते हैं कि ये एक नया तरह का क्रांति होगा। मैं मानता हूँ कि मेहनत मजदूरी करने के लिए अभिभावकों को ग्रामीण परिवेश में कहीं भी जाना ही होता है, और ऐसे यदि हम मोबाइल दे दें बच्चे को तो थोड़ा बच्चा तो बच्चा होता है, वो मिसयूज थोड़ा करेगा ही। तो शाम के वक्त अर्थात संध्याकालीन जैसे सुविधा हो 4:30-5-6 बजे या ड्यूटी से वो लोग आते हैं, तो उस वक्त भी यदि जो लिंक मैं भेजा हूँ, मैं भी अपना स्कूल से आकर के घर में आ गया 6 बजे 7 बजे, उस वक्त यदि हम लोग 40 मिनट भी या 1 घंटा भी थोड़ा सा रिविजन कर लें, तो मैं समझता हूँ एकदम ये एक बहुत अच्छा पहल होगा और इसका फलदायक या परिणाम और बेहतर आएगा। अभी एकल प्रयास से मैं समझता हूँ कुछ नहीं होने वाला।

0: ये जस्ट एक शांत पानी में मैंने पत्थर डाल दिया जैसा है, हलचल जब होगी, लहर उत्पन्न होगी, एक अंदर से पढ़ने का जज्बा जब पैदा होगा तो निश्चित एक क्रांतिकारी साबित होगा, मैं ऐसे समझता हूँ।
1: देखिए शिक्षा के क्षेत्र
2: चलन साइकिल लाइब्रेरी केवल किताबें पहुंचाने का पहल नहीं बल्कि ग्रामीण शिक्षा में आत्मविश्वास, स्व अध्ययन और सामुदायिक सहभागिता का एक प्रेरणादायक अभियान बनकर उभर रही है।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

चश्मे ए बद्दूर। यह इस फिल्म का गीत, आवाज़ें हैं हेमंती शुक्ला और यशुदास की।

कमांडो। आइए सुनते हैं स्वर का नगमा। युगल स्वर हैं अलीशा चिनॉय और विजय बेनेडिक्ट के।

इस नगमे के साथ ही समाप्त हुआ आज का रसरंजन कार्यक्रम। पूर्वाह्न के ठीक 10 बज रहे हैं। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
1: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
1: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
1: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
1: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
1: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
1: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
2: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
3: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
2: जी,
3: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
2: जी।
3: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
2: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
3: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
2: जी।
3: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
2: जी।
3: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
2: जी।
3: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक है
2: जी।
3: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
2: जी।
3: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
2: जी,
3: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
2: जी।
3: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
2: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
3: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
2: जी।
3: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांग जन, विकलांग जनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
2: जी।
3: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझे। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे, और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
2: जी।
3: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की, और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े, और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
2: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
3: बिल्कुल।
2: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
3: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया है।
2: जी
3: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
2: जी,
3: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है, या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं।
2: जी,
3: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है।
2: जी।
3: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं।
2: जी।
3: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं।
2: जी।
3: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
2: जी।
3: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है।
2: जी।
3: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है।
2: जी।
3: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं।
2: जी।
3: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है।
2: जी।
3: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं।
2: जी।
3: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
2: जी।
3: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
2: जी।
3: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
2: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है।
3: ओके।
2: और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
3: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं।
2: जी।
3: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
2: जी।
3: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
2: जी,
3: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की, जी आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
2: जी,
3: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
2: जी।
3: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
2: जी।
3: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
2: जी।
3: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
2: जी।
3: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है, और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से, उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
2: जी।
3: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
2: जी,
3: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
2: बिल्कुल।
3: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
2: जी।
3: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
2: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं
3: जी। देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं, जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
2: जी।
3: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
2: जी,
3: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
2: जी,
3: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
2: जी।
3: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
2: जी
3: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
2: जी।
3: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
2: जी,
3: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है? ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
2: जी।
3: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
2: जी,
3: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
2: जी।
3: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
2: जी।
3: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या? आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
2: जी। जी
3: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
2: बिल्कुल।
3: पीली टाइलें कैसी हैं? उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
2: जी,
3: उनके उभारों को महसूस कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
2: जी।
3: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
2: जी।
3: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
2: जी।
3: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है, जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
2: जी।
3: तो ये भी एक हमारी पहल है
2: जी। प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
3: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहाँ पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी। और एक और सरल उपाय है
2: जी,
3: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है। गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक्स CIET NCERT, आपको सीधा वहाँ उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहाँ से ले सकते हैं
2: जी।
3: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। और CIET वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
2: जी।
3: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIET की वेबसाइट से, NCERT ऑफिशियल यूट्यूब से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क, बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
2: जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
3: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
2: जी,
3: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
2: जी।
3: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
2: जी,
3: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
2: जी।
3: तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
2: जी।
3: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
2: जी। बिल्कुल, तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
3: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी
2: जी।
3: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके
2: जी।
3: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा
2: जी।
3: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं
2: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
3: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए। ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। हम आकाशवाणी चाईबासा से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। 10:30 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। कृपया कीजिए थोड़ा इंतजार।

मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स पर। साथ ही श्रोताओं, आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं FM 100.5 MHz पर भी। सुबह के 10:30 हो रहे हैं और इस वक्त आप सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची। जोहार रांची लेकर आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त, कार्यक्रम की होस्ट राजश्री। तो सबसे पहले बातें करेंगे हम हौसले की। जी हाँ, आज के सुविचार के साथ जोहार रांची कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जीवन की राह में चुनौतियां तो हर कदम पर मिलती हैं, है ना? लेकिन जो अपने हौसलों को थामे रखते हैं वही इतिहास रचते हैं, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और जब इरादे मजबूत हों और हौसले बुलंद हों, तब कठिन से कठिन राह भी आसान लगने लगती है। और सफलता हमेशा उन्हीं के कदम चूमती है जो हार मानने के बजाय आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए हमें अपने जिंदगी में हौसले को शामिल कर लेना चाहिए, हमेशा साथ लेकर चलना चाहिए।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त कार्यक्रम की होस्ट राजश्री। चलिए थोड़ी बातचीत मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि मौसम इन दिनों कुछ अजीब सा खेल खेल रहा है। कभी तेज धूप हो जाती है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी बरसात होने लगती है। तो इसके मौसम को लेकर अगर कुछ खबरें सामने हैं तो वो आपको जरूर बता दूं। झारखंड के लिए मौसम को लेकर राहत भरी खबर है। झारखंड सहित पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य के करीब बारिश होने के संकेत मिले हैं। वहीं देश में अन्य जगहों पर इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य से कमजोर रहने की संभावना है। और ये जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से मानसून 2026 के दूसरे चरण को लेकर दी गई है। और आपको बता दें कि पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में और पूर्व मध्य भारत से सटे क्षेत्रों में सामान्य से अधिक या सामान्य वर्षा की संभावना जताई गई है। जून में अगर झारखंड की बात फिर से आपको बता दूं कि झारखंड के लिए राहत की बात यह है कि जून में राज्य में हीट वेव यानी लू के चलने की संख्या जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। और वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गुजरात समेत कई राज्यों में सामान्य से अधिक हीट वेव के दिनों का पूर्वानुमान जारी किया गया है। विभाग ने यह भी बताया है कि जून में देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होगी और सामान्य से अधिक तापमान भी रहने की संभावना है। तो भाई, मौसम का आनंद लेते रहना है। मौसम का तो मिजाज ही होता है बदलने का। तो जैसे जैसे मौसम हमें इशारा दे रहा है, संकेत दे रहा है, वैसे वैसे हमें भी अपने दिनचर्या में सुधार लानी होगी और ऐसे जीना होगा कि बिल्कुल हम स्वस्थ रहें, चाहे मौसम कोई भी हो, है ना। तो चलिए आपको सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

तो चलिए अब बात करते हैं टीम रजत के स्वर्णिम प्रदर्शन के बारे में। जी हाँ, गेंदबाजों के बाद कोहली का जलवा हम सब ने देखा। आपको बता दें कि चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद विराट कोहली नाबाद 75 रन के अर्धशतक से रविवार को यहाँ इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा खिताब अपने नाम पर कर लिया है और खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने दर्शकों को खुशियां मनाने का मौका दिया है। आरसीबी ने अपने आक्रामक खेल से टूर्नामेंट में शुरू से ही दबदबा बनाए रखा और इसका समापन एक और ट्रॉफी से किया। आपको ये भी बता दें कि आरसीबी ने पिछले चरण में 18 साल बाद पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती थी और रविवार को कोहली ने छक्का लगाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने वाली आरसीबी के गेंदबाजों ने धीमी पिच का पूरा फायदा उठाते हुए गुजरात टाइटंस को 8 विकेट पर 155 रन ही बनाने दिए। 6 दिन में तीसरे स्थल पर ये तीसरा मैच खेल रही गुजरात टाइटंस पर थकान हावी दिखी और इसके बाद कोहली 42 गेंद 9 चौके और 3 छक्के और वेंकटेश अय्यर 32 रन की अच्छी शुरुआत दिलाई और ये जीत दर्ज की है। विराट कोहली ने अपना सबसे तेज अर्धशतक इसमें जड़ा है, तो हम बधाई देते हैं विराट कोहली को, उनकी पूरी टीम को, और आपको सुनाते हैं ये नगमा।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची। श्रोताओं, आप सबको ये पता ही होगा कि दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर नहीं रही, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी और मैथिली गीतों को भी उन्होंने स्वर दिए थे। तो हम अपने पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। आपको ये जरूर बता दें कि हिंदी सिनेमा की मशहूर पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी का रविवार शाम मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वो 89 वर्ष की थी और उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी। रात करीब 8 बजे अंतिम सांस ली। 1960 और 1970 के दशक में अपनी मधुर और सुरीली आवाज से उन्होंने संगीत जगत में अलग पहचान बनाई थी। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, तुमने पुकारा और हम चले आए, और आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे जैसे गीतों ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बनाया। हिंदी के अलावा उन्होंने मराठी, गुजराती, बंगाली, असमिया, कन्नड़, ओड़िया और अन्य भाषाओं में भी हजारों गीत गाए। उनकी आवाज की तुलना अक्सर लता मंगेशकर से की जाती थी, हालांकि वो स्वयं इस तुलना को स्वीकार नहीं करती थी। संगीत जगत में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2023 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। उनके बारे में और भी कुछ बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन आइए पहले उनकी आवाज में ये गाना सुनते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी जो नहीं नहीं अब हमारे बीच, उन्हें हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और उनके बारे में ये भी आपको बताते चलें कि जनवरी 1937 को 28 जनवरी के दिन अविभाजित भारत के ढाका और अब बांग्लादेश के नाम से जानते हैं भवानीपुर में हुआ था। उनका मूल नाम सुमन हेमाडी था। वर्ष 1943 में उनका परिवार मुंबई आ गया और बचपन से ही संगीत और चित्रकला में रुचि रखने वाली सुमन कल्याणपुर ने पंडित केशवराव भोले सहित कई उस्तादों से संगीत की शिक्षा ली और बाद में प्लेबैक गायन को अपना करियर बनाया। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2023 में पद्म भूषण से तो उन्हें सम्मानित किया ही गया, कई राज्य स्तरीय और संगीत सम्मान उनको दी जा चुकी थी। ये सम्मान उनके लंबे और समृद्ध संगीत सफर की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति माना गया। तो चलिए उनको श्रद्धांजलि देते हुए उन्हीं का गाया हुआ एक और गाना आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के दिन के इतिहास पर। यानी आज है 1 जून, और आज ही के दिन यानी 1 जून के दिन क्या क्या घटित हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, आइए इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, साल के 6 महीने का ये पहला दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। नेपाल में आज के दिन एक बड़ी घटना ने देश के पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया। इस दिन नेपाल के राजमहल में हुए सामूहिक हत्याकांड में

श्रोताओं, आज ही के दिन यानी 1 जून 1911 को भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार और दादा मुनि के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, जहां मशहूर दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार का भी जन्म हुआ था। साथ ही आज ही के दिन 1 जून 1842 को महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, जो ICS परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने थे, उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। आपको ये भी बताते चलें कि 1 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। 1 जून को मुख्य रूप से विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे और वैश्विक अभिभावक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाए जाते हैं। विश्व दुग्ध दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, वो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा 2001 से इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर डेयरी उद्योग और मानव आहार में दूध के महत्व को उजागर करना है। साथ ही अगर वैश्विक अभिभावक दिवस की बात करें, तो ये दिन बच्चों के लालन पोषण और उनके विकास में माता पिता यानी अभिभावकों के निस्वार्थ योगदान और समर्पण को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। तो और भी बातें हैं आज के दिन की, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं ये नगमा।

बिल्कुल, चल कहीं दूर निकल जाएं, और ऐसे मौसम में लोग जाना तो चाहते ही हैं हिल स्टेशन। तो हिल स्टेशन की बात करते हैं, कहाँ जा सकते हैं, या प्लान आपने बनाया है, नहीं बनाया है तो बना लीजिए। नेतरहाट आप सभी जानते हैं, छोटा नागपुर की रानी। जी हाँ, झारखंड के लातेहार जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है। घने जंगलों, मनमोहक झरनों और शानदार सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है नेतरहाट। यहाँ के मुख्य आकर्षण के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट है, जहाँ से डूबते सूरज का नज़ारा बेहद आकर्षक लगता है। कोयल व्यू पॉइंट है, जहाँ नेतरहाट से मात्र 3 किलोमीटर दूर यहाँ से कोयल नदी और आसपास की हरी भरी घाटियों का नज़ारा मिलता है। ऊपरी और लोअर घाघरी जलप्रपात आप देख सकते हैं। घने जंगलों के बीच स्थित ये झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहतरीन है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के बारे में आप सबने जरूर सुना होगा। ये औपनिवेशिक काल का प्रसिद्ध और ऐतिहासिक बोर्डिंग स्कूल है, जो अपनी बेहतरीन शिक्षा और शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। दूरी की अगर बात करें, रांची से, झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 156 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नेतरहाट। नेतरहाट में रुकने के लिए झारखंड पर्यटन का होटल प्रभात विहार एक अच्छा विकल्प है, जो बस पड़ाव के नज़दीक ही है। इसके अलावा वन विभाग के गेस्ट हाउस भी उपलब्ध हैं, और बहुत सारी अगर और जानकारियां चाहते हैं तो आप इसके लिए बुक कर सकते हैं। बुकिंग के लिए झारखंड पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप इसका डिटेल देख सकते हैं और प्लान बना सकते हैं नेतरहाट घूमने का।

श्रोताओं, जहां प्रश्न जन्म लेते हैं वहीं विज्ञान का आरंभ होता है। विज्ञान केवल पुस्तकों का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पल में मौजूद होता है। सुबह अलार्म बजने से लेकर रात में मोबाइल बंद करने तक हमारा पूरा दिन विज्ञान की ही तो देन है। विज्ञान ने मानव जीवन को एक नई दिशा दी है, नई गति दी है, नई सोच प्रदान की है, और आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो विज्ञान की ही अनगिनत खोजों और आविष्कारों का परिणाम है। अगर विज्ञान की रोचक दुनिया में एक नजर डालें तो कुछ तथ्य हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन कुछ चलिए आपको बताते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। मानव मस्तिष्क लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स से मिलकर बना है और ये हमारे शरीर का सबसे जटिल अंग माना जाता है। पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति के शरीर में अरबों खरबों परमाणु हैं और इनमें से कई परमाणु कभी किसी तारे का हिस्सा रहे होंगे। अंतरिक्ष में यदि कोई रोते तो आंसू नीचे नहीं गिरते, बल्कि चेहरे के आसपास ही तैरते रहते हैं, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। आपको ये भी बता दें कि मधुमक्खियां अपने पंख प्रति सेकंड लगभग 200 बार फड़फड़ाती हैं, इसलिए उनकी भनभनाहट सुनाई देती है। ये तथ्य केवल जानकारी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये बताते हैं कि प्रकृति और ब्रह्मांड कितने अद्भुत हैं। विज्ञान की बातें करेंगे तो बस करते ही रहेंगे, लेकिन अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है, तो चलते चलते लीजिए एक गाना सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत।

0: زلفیں کھلی ہوئی ہیں ہے چاندنی یا تمہاری نظروں سے.
1: श्रोताओं आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची. हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं. मीडिया वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर. साथ ही श्रोताओं आप हमारा ये कार्यक्रम सुन पा रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर भी. अब वक्त हो चला है कार्यक्रम आपकी पसंद का. तो आपकी पसंद का पहला गाना हमने लिया है फिल्म पत्थर के सनम से. गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी, गीतकार हैं मजरू और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. इस गीत को पसंद करने वाले हैं कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्मीन, मोरा अफजाल इब्राहिम. साथ ही इसी नगमे को सुनना चाहते हैं दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राम और प्रांजल रॉय. साथ ही बाबा बैजनाथ धाम से इसी गाने की फरमाइश भेजी है मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी और रोशनी केशरी. तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये गाना.

अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म डर से। आवाजें लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की है। संगीतकार हैं शिवहरि और गीतकार आनंद बख्शी। इस गीत को पसंद किया है आप सब श्रोताओं ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंदारी, अभय नंदारी, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। इसी गाने को सुनना चाहते हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम और लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर और परवीन आसमा फकीर। साथ ही बुलंदशहर से बद्रू अली अंसारी, फर्जू अली अंसारी और फर्जी अली अंसारी जी। आप सब सुनना चाहते हैं ये नगमा।

श्रोताओं, आप सब सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और मैं हूं आपके साथ कार्यक्रम की होस्ट, आपकी दोस्त राजश्री। अगला नगमा हमने चुना है आप सब श्रोताओं की फरमाइश पर। आप सब हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलबिंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक। साथ ही इसी गाने को सुनना चाहते हैं आप सब श्रोता। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। आप सब सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया गाना फिल्म आदि से। संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और इसे लिखा है गुलजार ने। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये नगमा।

अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है सावन को आने दो। गायक कलाकार हैं येसुदास, गीतकार फोक जामी और संगीतकार राज कमल। इस नगमे को सुनना चाहते हैं आप सब श्रोता। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मणिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। और इसी गाने को सुनना चाहते हैं जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, शबाना आलम, नाज प्रवीण और चांदनी नाज। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये गाना येसुदास की आवाज में।

अगले गाने की फरमाइश भेजी है गोंदा टाउन कांके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, भीम सिंह, सिद्धि जायसवाल और अनुप्रिया भगत। साथ ही इसी गाने को सुनना चाहते हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज और कुवात बिहार से नरगिस जफर। आप सब सुनना चाहते हैं ये नगमा।

यहाँ फिल्म का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस और गायक कलाकार हैं चिन्मया श्रीपदा और गोपी सुंदर। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

श्रोताओं, इसी नगमे के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त कार्यक्रम की होस्ट राजश्री को। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम में 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही श्रोताओं, आप हमारा ये कार्यक्रम सुन पा रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर भी। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

श्रोताओं, दिन के 12 बज रहे हैं और इस वक्त आप सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। और आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं नागपुरी भाषा में।

गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनवैया बहिन मन के वंदना राय बटले जोहार और आसरा करीला कि हमरे कर सब सुनवैया बहिन मन बहुत बढ़िया से होबें और कुशल मंगल से होबें।

देखो नहीं, आजकल कर महिला मन अपन हरेक क्षेत्र में योगदान देवत हैं, चाहे वो कला कर क्षेत्र होवे, चाहे शिक्षा कर, चाहे व्यवसाय कर, चाहे नौकरी कर, हरेक क्षेत्र में वो अपन परचम लहराते हैं। तो इसने एगो बहुत ही बढ़िया संगीत गाने वाली गायिका जकर कि आज एगो अध्याय खत्म होलक, वह महान गायिका सुमन कल्याणपुर जिनकर आज निधन हो गलक, उनकर दिवंगत आत्मा के हमर बटले भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कलाकार क्षेत्र में उनकर शानदार योगदान ले भारत का तेसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण 2023 से उनके सम्मानित करल जा रहे। इनकर यात्रा सुकरची, चांदनी और मंगू जैसन फिल्म से शुरू होलक। शराबी शराबी ये सावन का मौसम, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार ना तुम हमें जानो, पर्वतों के पेड़ों पर और निम्बो नीचिया झाड़ा मागे जैसन कै गो सदाबहार गीत में वो अपन आवाज दे लें। मोहम्मद रफी कर संगे उनकर कोलाब्रेशन के काफी प्रसिद्धि भी मिलक। सुमन कल्याणपुर अपन करियर में 800 से बगरा गीत गाले और दशकों तक संगीत कर क्षेत्र में अपन शानदार योगदान दिले और अपन एगो अलग पहचान भी बना लें। 28 जनवरी 1937 के अविभाजित भारत कर हिस्सा ढाका में जन्मल सुमन जी हिंदी और मराठी सिनेमा कर सबसे प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर बनले और फिल्मी गीत कर अलावे भजन, गजल, मराठी अभंग और भावगीत भी गाले, जे एगो कलाकार कर रूप में उनकर बहुमुखी प्रतिभा के देखाले। तो आज उनके अमर बट से भावपूर्ण श्रद्धांजलि और वह चलते चलू सुनब आज हम उनकर बहुते प्रसिद्ध गीत गावल नाना करते प्यार, जे की फिल्म जब जब फूल खिले से है।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमने मन सुन ली गीत नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, और वो गीत रहे फिल्म जब जब फूल खिले कर। तो जैसे कि हमरे मन जानीला कि महिला कर ऊपरे में गोटा परिवार कर जिम्मेवारी होवेला, सेले जरूरी है उमन के भी स्वस्थ रह कर और अपन परिवार के बहुत स्वस्थ रखे कर। और उगर खातिर जरूरी है सही खान पान, फल सब्जी अनाज ये सब तो स्वस्थ रहे खातिर जरूरी है ये है, लेकिन उकर संगे हमरे के दूध भी जरूर पिए के चाही। काले कि दूध के एगो संपूर्ण आहार मानल जाएला, जेकर में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और B12 जैसन पोषक तत्व होवेला। दूध हमरे कर हड्डी के मजबूत बनाए और मांसपेशी कर संपूर्ण विकास करे में बहुते सहायक है। तो चलू हमरे मन जानब कि दूध पिए कर फायदा का का है। दूध में कैल्शियम और विटामिन डी होवेला, जेकर से हड्डी और दांत दियो के मजबूती मिलेला। इकर में मौजूद प्रोटीन कसरत कर बादे मांसपेशी कर मरम्मत और उके मजबूत बनाए में हमरे के मदद करेला। जिंक और विटामिन हमरे कर शरीर कर रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाएला। रात के अगर सुतेक से पहले हमरे मन गरम दूध पीला तो शरीर के आराम भी मिलेला और हमरे के नींद भी बहुत बढ़िया से आवेला। एगो गिलास दूध में पोटेशियम, फास्फोरस और राइबोफ्लेविन जेके कि बी विटामिन कहे ना, वो होवेला जेकि सारा दिन हमरे के ऊर्जा देवेला और थकान के भी दूर करेला। लेकिन दूध पिए के लिए हमरे के कएगो बात कर ध्यान भी रखे के चाहिए। जैसे कि एगो स्वस्थ आदमी ले दिन में लगभग 300 से 400 मिलीलीटर दूध पर्याप्त होवेला। जे मन के लैक्टोज इंटोलरेंस या दूध से एलर्जी है, उ मन के दूध कर सेवन करे के नहीं चाहिए और दूध में अधिका चीनी मिलाइक से हमरे मन के बाचे के चाहिए। तो रौरे मन भी जरूर दूध पियो और अपने के स्वस्थ रखो। तो चलो अब हमरे मन सुनब एगो नागपुरी लोकगीत, यशोदा देवी और संगीमन कर गावल।

0: हाँ तो बहन मन एखन हमरे मन सुनत रहे नागपुरी लोकगीत यशोदा देवी और संगी मन कर गावल। और चलू अब हम रौरे मन के जानकारी कराब कि छौआ कर मानसिक विकास में अभिभावक मन कर का भूमिका होवेला और इकर बारे में हमरे के बतावे प्रेम प्रकाश पुरी। बच्चों के मानसिक विकास में माता पिता की भूमिका नींव के समान होती है। बच्चे का घर ही उसकी पहली पाठशाला है और अभिभावक पहले शिक्षक। एक सुरक्षित, सकारात्मक और संवादात्मक माहौल देकर अभिभावक बच्चों की सोचने समझने की क्षमता और भावनाओं को नियंत्रित करने का और आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में जानकारी करेंगे प्रेम प्रकाश पुरी जी से, जो हमें बताएंगे कि बच्चों के मानसिक विकास में माता पिता की क्या भूमिका होती है।
1: धन्यवाद मैम।
0: प्रेम पुरी जी, सबसे पहले आप हम श्रोताओं को बताएं कि बच्चों के विकास में अभिभावकों की क्या भूमिका होती है।
1: तब बच्चों के प्रथम शिक्षक और मार्गदर्शक होते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा नैतिक विकास में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि हम इससे अगर संक्षिप्त में इसका अनुवाद किया जाए तो इसे हम लोग 5-6 भाग में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि संस्कार और नैतिक शिक्षा, भावनात्मक सहयोग, शिक्षा में सहयोग, स्वास्थ्य और पोषण में सहयोग, सामाजिक विकास में सहयोग और सबसे महत्वपूर्ण आदर्श प्रस्तुत करना हमें अपने बच्चों को सिखाना होता है। और ये सारी चीजें शुरुआती दौर में माता पिता की ही भूमिका होती है।
0: बच्चों के मानसिक विकास के लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं?
1: बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रेम पूर्ण वातावरण, अच्छी शिक्षा, सकारात्मक प्रोत्साहन और उचित पोषणों से भरपूर बच्चों के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। इसे अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो अनुवांशिकी, पोषण, पारिवारिक वातावरण, खेल और गतिविधियां और सामाजिक संपर्क में संक्षिप्त किया जा सकता है। माता पिता से मिलने वाली जीन बच्चे की मूल बौद्धिक सक्षमता और सीखने की गति की नींव रखते हैं। मस्तिष्क के विकास के लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड, आयरन, जिंक, विटामिन जैसे संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक हैं। फिर हम लोग घर का सुरक्षित, तनाव मुक्त और प्रेम पूर्ण माहौल बच्चे के संवेदनात्मक विकास को बढ़ाता है। माता पिता के साथ सकारात्मक बातचीत मस्तिष्क की तंत्रियाओं को मजबूत करती है। उसके अलावा हमें सामाजिक संपर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। परिवार के बाहर अन्य बच्चों और लोगों के साथ मेल जोल से बच्चे का सामाजिक और भाषा संबंधी विकास होता है।
0: प्रेम जी, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। माता पिता बच्चों के सामाजिक विकास को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं?
1: माता पिता बच्चों के सामाजिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक विकास का अर्थ है बच्चों में दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने, सहयोग करने, सम्मान देने और समाज के नियमों का पालन करने की क्षमता का विकास होना। बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार और आदतों से सबसे अधिक सीखते हैं, इसलिए माता पिता का आचरण बच्चों के सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि माता पिता बच्चों को परिवार के सदस्य, मित्रों, पड़ोसियों के अच्छे संबंध बनाने के लिए हम लोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें दूसरों के सम्मान करना, बड़ों की बात मानना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना सिखाना चाहिए। बच्चों को सामूहिक गतिविधियों, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक आयोजनों में भाग लेने के लिए हमेशा प्रोत्साहित और अवसर प्रदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त माता पिता को बच्चों को अपनी बात से विनम्रता से रखने, दूसरों की बात ध्यान से सुनने, मतभेदों को शांति से सुलझाने की शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों में ईमानदारी, सहानुभूति, करुणा और जिम्मेदारी जैसी सामाजिक गुणों का विकास भी बहुत बहुत आवश्यक होती है।
0: क्या अभिभावकों को शिक्षा में शिक्षकों के साथ मिलकर काम करना चाहिए?
1: जैसे कि अभिभावक ही पहली शिक्षक होते हैं हम बच्चों के लिए। शिक्षकों के साथ तालमेल अभिभावकों का जिम्मेदारी होती है। अभिभावक को बच्चों की शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों के साथ मिलकर हमेशा कार्य करना चाहिए। बच्चों का विकास तभी प्रभावी रूप से संभव है जब घर और विद्यालय दोनों मिलकर उसके सीखने और व्यक्तित्व निर्माण में सहयोग करेंगे। अभिभावक और शिक्षक दोनों ही बच्चों के जीवन के महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होते हैं, इसलिए उनके बीच अच्छा संवाद और सहयोग आवश्यक है। अभिभावकों को समय समय पर विद्यालय जाकर बच्चों की पढ़ाई, व्यवहार और प्रगति की जानकारी भी लेनी चाहिए। शिक्षकों के सुझावों के समझकर उन्हें घर पर लागू भी करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि बच्चे के विकास में किसी विषय में कठिनाइयां हो रही है या उसके व्यवहार में कोई बदलाव दिखाई दे रही है तो अभिभावकों को इसकी जानकारी शिक्षकों को देनी चाहिए ताकि मिलकर उचित समाधान निकाला जा सके।
0: पढ़ाई के साथ साथ अभिभावकों को अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए?
1: बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना प्रत्येक अभिभावक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आत्मनिर्भरता वह गुण है जो बच्चों को अपने कार्य स्वयं करने, निर्णय लेने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के योग बनाता है। आत्मनिर्भर बच्चे भविष्य में अधिक आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और सफल व्यक्ति बनते हैं। अभिभावकों को बच्चों की छोटी उम्र से ही अपने दैनिक कार्य स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे अपने सामान व्यवस्थित करना, स्कूल बैग तैयार करना, कपड़े संभालना और छोटी छोटी चीजें। इनमें जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। बच्चों को उनकी आयु के अनुसार छोटे छोटे निर्णय लेने का

0: अवसर देने चाहिए ताकि उनके निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ सके। ये छोटी छोटी चीजें करके हम अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: अभिभावक के कौन कौन से कर्तव्य हैं और उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए जो बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं?
0: पहली बात, अभिभावक जैसे हैं उनके बच्चे भी किसी किसी स्तर तक उनके बच्चे भी उनके जैसे ही बनेंगे, तो उनका कर्तव्य बच्चों के जीवन के प्रथम शिक्षक और मार्गदर्शक होते हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य बच्चों को प्रेम, सुरक्षा और उचित देखभाल प्रदान करना है। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें बच्चों को अच्छे संस्कार, अनुशासन, ईमानदारी और जिम्मेदारी का महत्व सिखाना चाहिए। साथ ही बच्चों की भावनाओं को समझते हुए उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाना चाहिए। बच्चों की आवश्यकता को पूरी करनी चाहिए, उन्हें सही और गलत का ज्ञान देना तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना अभिभावक के प्रमुख कर्तव्य माने जाते हैं।
1: अभिभावक में कौन कौन आते हैं और अभिभावक के साथ साथ बच्चों के विकास में समाज की क्या भूमिका है?
0: प्रथम अभिभावक उनके माता पिता हो सकते हैं, उनके दादा दादी हो सकते हैं, उनके नाना नानी हो सकते हैं, और इनके अलावा बच्चे जहाँ रहते हैं, जिनको हम लोग लोकल गार्जियन बोलते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। उनके मौसा मौसी, उनके अंकल आंटी, कई स्तर पर पड़ोसी भी अभिभावक की भूमिका निभा सकते हैं। बच्चों के विकास में समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज बच्चों को सीखने, सामाजिक व्यवहार विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। बच्चे अपने आसपास के लोगों, मित्रों, शिक्षकों, पड़ोसियों और अन्य लोगों से अनेक बातें सीखते हैं। समाज बच्चों में सहयोग, सम्मान, सहानुभूति और सामूहिकता की भावना विकसित करता है। एक अच्छा और स्वस्थ समाज वातावरण बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने में सहायता करता है। समाज बच्चों को सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों से परिचित कराता है, जिससे वे जिम्मेदार और दर्शक नागरिक बन पाते हैं। समाज इसके अलावा बच्चों की जीवन यापन में भी सहायता करता है, जिसमें बच्चों के कैरियर को भी बनाने में सहायता प्रदान करता है।
1: प्रेमपुरी जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि एक अभिभावक अपने बच्चों को कैसे सही ढंग से विकास कर सकता है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखन हमरे मन जानकारी कर ली कि छुआ कर मानसिक विकास में अभिभावक मनकर का भूमिका होवेला और इकर बारे में हमरे के बतात रहे प्रेम प्रकाश पुरी। तो चलू अब हमरे मन सुनब और एगो नागपुरी लोकगीत दीना सिंह और संगी मनकर गावल।

एखन हमरे मन सुनले ई सुंदर गीत दीना सिंह और संगी मनकर गावल। और बही मन हमरे मन तो जानीला कि स्वच्छ हवा स्वच्छ जीवन ले कितना जरूरी है। स्वच्छ हवा ए स्वस्थ और लंबा जीवन जिए कर सबसे पहला शर्त है। शुद्ध वायु फेफड़ा के मजबूत करेला, हृदय रोग कर खतरा के घटाएला और ऊर्जा कर स्तर के बढ़ाएला। तो स्वच्छ हवा कर कई गो लाभ है, जैसे कि ताज़ा हवा फेफड़ा कर कार्य प्रणाली में सुधार करेला और शरीर कर हरेक हिस्सा में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुँचाएला। हवा में मिले वाला धूल कण और विषैला तत्व कम रहल से त्वचा स्वस्थ रहेला और उम्र बढ़े कर जो लक्षण है वो भी धीमा हो जाएला। और शुद्ध ऑक्सीजन मस्तिष्क कर कार्य प्रणाली के तेज करेला, जेकर से कि तनाव भी कम होवेला और हमारे कर एकाग्रता भी बढ़ेला। तो बहन मन अब तो हमारे कर जाय कर बेरा होते। तो अगला सोमवार के रौरे मन कर संगे फिर से गोठिया। तब तक खातिर देव विदा जुहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गृह लक्ष्मी और आज का कार्यक्रम आपने सुना। नागपुरी भाषा में, और इसी के साथ गृहलक्ष्मी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम, एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम है उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब आ रही है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
2: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद।
2: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने

0: बता रहे हैं?
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में। आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
0: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
1: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना।
0: जी,
1: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना।
0: जी,
1: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं।
0: जी,
1: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक है
0: जी।
1: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है।
0: जी,
1: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन लें, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो,
0: जी,
1: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती।
0: जी,
1: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहाँ व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
0: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
1: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
0: जी,
1: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी।
0: जी,
1: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहाँ हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझे। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे, और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ।
0: जी,
1: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की, और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े, और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
0: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये

0: मानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
1: बिल्कुल,
0: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
1: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
0: जी,
1: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
0: जी,
1: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है, या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
0: जी।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
0: जी।
1: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
0: जी।
1: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
0: जी।
1: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
0: जी।
1: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
0: जी।
1: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
0: जी।
1: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
0: जी।
1: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा
0: जी,
1: आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
0: जी।
1: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
0: जी।
1: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
0: जी।
1: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
0: जी।
1: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है
0: जी। आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
1: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
0: जी।
1: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
0: जी।
1: हैं, जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
0: जी
1: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
0: जी।
1: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
0: जी,
1: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
0: जी।
1: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखते।

0: चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा।
1: जी
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है।
1: जी
0: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है। और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से, उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत।
1: जी
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में।
1: जी
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल,
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं।
1: जी
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है।
1: जी ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी
0: जी।
1: और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं।
1: जी
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है।
1: जी
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है।
1: जी
0: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIET NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
1: जी
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी।
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
1: जी।
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो, टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
1: जी जी।
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल,
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
1: जी,
0: उनके उभारों को महसूस
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
1: जी।
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIET NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना
1: जी,
0: जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त

0: मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक CIT NCERT, आपको सीधा वहाँ उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहाँ से ले सकते हैं
1: जी।
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
1: जी।
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIT की वेबसाइट से, NCERT ऑफिशियल YouTube से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
1: जी,
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
1: जी।
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
1: जी,
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी।
0: तो सबसे बड़ी बात तो यही है, और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
1: जी।
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
1: जी। बिल्कुल, तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है, उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के एक शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी
1: जी,
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके
1: जी।
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा
1: जी।
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं
1: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए, इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाएगा। हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं, कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
0: नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद, हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल

0: प्रदेश तथा मिजोरम में एक एक सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा, मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President Oo Mae Aung Hlaing are holding bilateral talks in New Delhi. The talks aim to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, is likely to come up for discussions during their talks. The Myanmar President arrived in Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. He will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Our correspondent has the details.
2: The President of Myanmar will meet President Draupadi Murmu today evening at Rashtrapati Bhavan. He is also scheduled to visit to the Light and the Lotus, relics of the Awakened One exhibition at Rai Pithora Cultural Complex in the National Capital. The exhibition is showcasing the sacred Piprahwar relics associated with Lord Buddha along with significant associated antiquities. The official visit of the President of Myanmar to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. With Suparna Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. In an article published in a national daily, Mr. Goyal said the agreement immediately gives 100% duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines, covering 99.38% of exports. Gross goods and services tax GST collections rose 3.2% to over 1,94,000 crore rupees last month on improved supplies of goods and services and continued expansion of

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही झारखंड में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। भाजपा के दिग्गज नेताओं का दिल्ली में मंथन। झामुमो ने 3 दिनों में तस्वीर साफ होने का किया दावा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे। 1,12,00,000 से अधिक ऋण किए गए वितरित। 75,00,000 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मैराथन समीक्षा बैठकों का दौर आज भी रहेगा जारी। विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी योजनाओं और जनहित के कार्यों की करेंगे समीक्षा। राज्य में ड्रंक एंड ड्राइव पर पुलिस सख्त। राजधानी रांची में यातायात विभाग ने सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तेज किया अभियान। और 10 जून से शुरू हो रहे झारखंड प्रीमियर लीग को लेकर खेल प्रेमियों में भारी उत्साह। जेएससीए अध्यक्ष ने कहा, राज्य के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जाने के खुलेंगे नए द्वार। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सहित देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 8 जून तक चलेगी। इन सीटों पर 18 जून को मतदान और मतगणना होगी। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू सहित 3 संगठनात्मक नेता दिल्ली के दौरे पर हैं। वे केंद्रीय नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे, जहां राज्य की 2 सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इधर सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगले 3 दिनों के भीतर गठबंधन के भीतर चुनाव की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी।
1: 3 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी और हम लोग गठबंधन के एक दूसरे के सहयोगी और इस नाते हम लोग बैठ करके ही कोई निर्णय लेते हैं। और स्वाभाविक है कि जब कांग्रेस पार्टी के लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मुझे 2-3 दिन का समय चाहिए और उसके बाद फिर इस पर हम लोग निर्णय लेंगे बैठ करके।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को डिजिटल रूप से इस योजना से जोड़ा गया है। गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। नगर निगम क्षेत्र के डांडीडीह की लाभुक गुलशन और समीरन खातून ने बताया कि पहले मिट्टी और खपड़े के घरों में बरसात काटना मुश्किल था। अब पक्का मकान मिलने से वे सुरक्षित और खुशहाल हैं और उन्होंने सरकार का आभार जताया है।
2: मेरा नाम समीरन खातून है। मेरा घर का बहुत दिक्कत था, पहले खपड़ा घर में रहते थे, बहुत पानी उनी चूता था, इसलिए हम लोग सरकार से हम लोग मांग किए कि मेरा घर न है और अब सरकार दे दिया, हम लोग तो बहुत अच्छा से रह रहे हैं।
3: मेरा नाम है गुलशन आरा, घर डाड़ी दी, पहले घर टूटल उटल था, अब तो दे दिया घर, तब जरा बढ़िया बन गया, अब बढ़िया से रहने लगे।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के भी कई कामकाज का जायजा लेंगे। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति और जनहित के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रांची में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में झारखंड को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य में कैंसर के 35-40% मामलों का मुख्य कारण तंबाकू है। उन्होंने नशे के खिलाफ सामूहिक जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल airnewsranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश में परिसीमन की चर्चाओं के बीच रांची में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अगुवाई में आदिवासी समाज की अहम बैठक हुई। इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटने की आशंका पर चिंता जताई गई। श्री तिर्की ने बताया कि इस मुद्दे पर 17 जून को सर्वदलीय बैठक और 2 अगस्त को रांची में आदिवासी महाजुटान आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
4: 2 अगस्त को पूरे राज्य के आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया, तो पूरे राज्य के आदिवासी कुमार आएंगे और ये परिसीमन में किसी भी हालात में आदिवासी का हम तार्किक रूप से कानूनी तरीके से बताएंगे कि हमारी संख्या किसी हालत में नहीं घटनी चाहिए, ये पूरे चीजों को लोगों को बताया जाएगा।
0: राजधानी रांची में पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव यानी शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने आम जनता से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और नशे में वाहन न चलाने की अपील की है।
5: देखिए, पिछले एक हफ्ता में देखा जा रहा है कि जितने भी ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस हैं या फिर एक्सीडेंट के केसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, और उसका जो मुख्य कारण जो हम लोग को सामने आ रहा है कि लोग शराब का सेवन करने के उपरांत गाड़ियां चलाते हैं। तो ये स्पेशल जो ड्राइव चलाई गई है हम इसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चला रहे हैं और आगे भी इसको चलाते रहेंगे ताकि इस तरह के एक्सीडेंट्स वगैरह इनमें कटौती आ सके।
0: मौसम विभाग ने बोकारो, रामगढ़ और सिमडेगा जिले के कुछ इलाकों के लिए तात्कालिक चेतावनी जारी की है। अगले 1 से 3 घंटे में इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज करते हुए यह 23,551 पर आ गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में पहली बार आयोजित हो रही झारखंड प्रीमियर लीग को लेकर खेल जगत में भारी उत्साह है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि 10 जून से शुरू होने वाली यह लीग राज्य के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जाने के अवसरों का नया द्वार खोलेगी।
6: जो बड़े खिलाड़ी हैं जिनको सारे लोग अभी जानते हैं, लेकिन ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनको शायद दुनिया ने अभी नहीं देखा है, तो उनको अपने टैलेंट को दिखाने का ये बेहतर मौका है। कोई खिलाड़ी जो है इसकी उसको मलाल ना रहे कि मुझे मौका नहीं मिला। जो ब्रांड T20 का झारखंड लीग का तभी बनेगा जब इसकी फैन बेस बढ़े, इससे हमारे झारखंड के खिलाड़ी जो है उनको इसका लाभ।
0: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद में गुजरात के 155 रनों के जवाब में बेंगलुरु ने विराट कोहली की नाबाद 75 रनों की पारी की बदौलत 18वें ओवर में जीत दर्ज की। कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं राजस्थान के 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने सर्वाधिक 776 रन बनाकर सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप और उभरते खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही झारखंड में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। भाजपा के दिग्गज नेताओं का दिल्ली में मंथन। झामुमो ने 3 दिनों में तस्वीर साफ होने का किया दावा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे। 1,12,00,000 से अधिक ऋण किए गए वितरित। 75,00,000 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मैराथन समीक्षा बैठकों का दौर आज भी रहेगा जारी। विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी योजनाओं और जनहित के कार्यों की करेंगे समीक्षा। राज्य में ड्रंक एंड ड्राइव पर पुलिस सख्त। राजधानी रांची में यातायात विभाग ने सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तेज किया अभियान। और 10 जून से शुरू हो रहे झारखंड प्रीमियर लीग को लेकर खेल प्रेमियों में भारी उत्साह। जेएससी अध्यक्ष ने कहा, राज्य के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जाने के खुलेंगे नए द्वार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हम लेकर आएंगे अगला कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। लीजिए सुनिए उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। इसके अंतर्गत आज आपको

अभी आप सिद्धेश्वरी देवी के स्वर में खमाज में ठुमरी सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं चंद गजलें। पहली गजल भूपेंद्र और मिताली सिंह के आवाज में।

0: 8th to the 31st of last month, the championships are serving as a qualifying event for the World Under-20 Athletics Championships scheduled to be held at Oregon in the United States in August. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent of Asian Under-20 Athletics Championships on winning 19 medals. In a social media post, Mr. Modi said this outstanding performance reflects the determination and excellence of India's young athletes. In the Under-17 Asian Wrestling Championships, India's women grapplers delivered a strong performance, winning a total of 10 medals, including 2 gold, 3 silver and 5 bronze at Da Nang in Vietnam. Leading the charge, Deeksha in the 43-kilogram category and Garima in 73-kilogram category clinched gold medals. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Gujarat, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Tripura, Odisha, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and West Madhya Pradesh today. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Rajasthan till tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Lying hold bilateral talks in New Delhi. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement comes into force, gives Indian exporters duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari expands cabinet with induction of 35 new ministers. Gross GST collection rises to over 1,94,000 crore rupees in May. PM Swanidhi scheme completes 6 years. Prime Minister Narendra Modi says scheme opened new growth opportunities for street vendors. And India ends impressive campaign at Asian Under-20 Athletics Championships with 19 medals, including 10 gold in Hong Kong. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Sir Firozi. मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइंग ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइंग के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे
2: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे
3: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत

0: करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफिन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा, मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
2: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
3: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
4: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
3: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के

0: तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
2: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
1: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपए 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपए 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपए 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
4: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय

अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं और इस वक्त आप सुनते हैं फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती। तो लीजिए सबसे पहले ये पेशकश, चलिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कर्मा का ये गाना, ये देशभक्ति गीत। आवाज थी कविता कृष्ण मूर्ति की, साथ में सुखविंदर सिंह, उदित नारायण। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती। लीजिए सुनिए अगली प्रस्तुति।

के की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म काइट्स का ये प्यारा सनगमा। इस गीत को लिखा था मनोज, इस गीत को लिखा है नासिर फराज ने। और अब आपको अगला गाना सुनवा रहे हैं

आप अभी फिल्म केसरी का ये नगमा सुन रहे थे। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दबंग 2 से। आवाजें हैं राहत फतेह अली खान की और श्रेया घोषाल की। इस गीत को लिखा है समीर अनजान ने। लीजिए सुनिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती और अब आपको सुनाते हैं फिल्म बीवी नंबर वन का एक गाना जिसे गाया है अभिजीत और अनुराधा श्रीराम ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने और इसे लिखा है समीर ने। लीजिए सुनिए ये गाना।

0: इसी गाने के साथ फौजी भाइयों को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम जय भारती यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड सहित देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 8 जून तक चलेगी। इन सीटों पर 18 जून को मतदान और मतगणना होगी। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पूर्वी सिंहभूम जिले के संगठनात्मक कार्यक्रम में भाग लेने जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने संगठनात्मक कार्यक्रम को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बाबूलाल मरांडी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के साथ हुई कथित मारपीट की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तथ्यों की जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। श्री मरांडी ने कहा कि हर घटना को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। धनबाद जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली मारने की घटना सामने आई है। घटना के बाद हमलावर उसकी बाइक लेकर फरार हो गए। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध नजर आ रहा है और इसके तार कोयला खनन क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।
1: लड़का है रवि बक्सरा, और तोपचांची थाना क्षेत्र में जीटी रोड के नीचे गिरा हुआ था। सूचना दिया पुलिस को, पुलिस आई तो बताया कि गोली मार के लोग भाग गया है और किसी से कोई दुश्मनी नहीं। फिर जब हम लोग उसको लेकर के हॉस्पिटल आए और उसके साथ एक लड़का था दिवाकर सिंह, दोनों से हम लोगों ने पूछताछ किया तो कुछ और भी कहानी पुलिस से बचने के लिए, क्योंकि इसको इलाज कराना था और जब तक पुलिस केस नहीं होता तो कोई हॉस्पिटल इसको लेता नहीं।
0: रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन नार्कोस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा की बड़ी खेप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं। आरपीएफ ने बरामद सामग्री और आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी रांची को सौंप दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज जमशेदपुर के बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर कॉलेज के 132 एमबीबीएस छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। अपने संबोधन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई चिकित्सा तकनीकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। राज्यपाल ने छात्रों से तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए मरीजों की बेहतर सेवा करने का आह्वान किया। हजारीबाग जिले में सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा नशा मुक्ति और डायन बिसाही कुप्रथा के विरुद्ध नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। विष्णुगढ़ प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों तथा अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक किया गया। कलाकारों ने संदेश दिया कि शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक एकता के माध्यम से ऐसी कुरीतियों को समाप्त किया जा सकता है। धनबाद के कोहिनूर मैदान में बने वेयरहाउस के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक

अप्रोच रोड बनाया जा रहा है। इस सड़क को कोर्ट रोड से जोड़ा जाएगा ताकि वेयरहाउस आने वाले ट्रकों के परिचालन में कोई परेशानी नहीं हो। इस रोड के बनने से कई अधिवक्ताओं के बैठने की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसे लेकर धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में अधिवक्तागण SDM से वार्ता करने पहुंचे। बार एसोसिएशन अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने बताया कि वार्ता में समाधान पर सहमति बनी है।

0: तो हम लोगों से बातचीत होने के बाद वो 25 फीट में बात तय हो चुका था। हम लोगों को बगल में जो खाली ऐसे बेकार पड़ा हुआ है, कचरा रखा हुआ है, तो उसको सफाई करके हम लोग अपने लिए बोले थे कि जो वकील वहाँ से हटे हैं उसको यहाँ पर बैठने का बात हो रहा है। इसी को फाइनल करने के लिए अभी हम लोग जो साहब भी बोले।
1: विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह के पहले दिन आज साहिबगंज वन प्रमंडल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग समेत दर्जनों वन्य कर्मियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। डीएफओ प्रबल गर्ग ने बताया कि रक्तदान एक्सीडेंट और थैलेसीमिया के मरीजों के जीवन रक्षा में अहम भूमिका निभाता है। वहीं सिविल सर्जन रामदेव पासवान ने रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूकता पर बल दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज चुके हैं और इस वक्त आप इंतजार करते हैं नॉनस्टॉप अंताक्षरी का। खेलेंगे अंताक्षरी एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और ये वक्त हो गया है नॉनस्टॉप अंताक्षरी का। तो चलिए शुरू करते हैं अक्षर म से।

तो फिर से अक्षर मिला है हमें ला, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं आपके साथ इस अंताक्षरी को और आगे बढ़ाऊं। लेकिन आप खेलते रहिए अंताक्षरी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, और मुझे दीजिए अंताक्षरी समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3:23 हो रहे हैं और इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं रांची मेलेडीज। श्रोताओं, दूरी चाहे कितनी भी हो जाए, मोहब्बत का रिश्ता कम नहीं होता। जो दिल में बस जाए उसका एहसास कभी कम नहीं होता। कुछ ऐसे ही अनमोल रिश्तों और यादों को समर्पित किया है मैंने इस गीत के माध्यम से। लीजिए सुनिए।

इश्क में अदब भी है, नज़ाकत भी है और थोड़ी सी मीठी शरारत भी होती है। कभी एक नज़र का सलाम दिल जीत लेता है तो कभी कभी किसी के कदमों की आहट ही धड़कनों को बढ़ा देती है। और जब मोहब्बत अपनी पूरी तहजीब के साथ इजहार करे तो शब्द भी गीत बन जाते हैं, है ना। कहते हैं कि खूबसूरती के सामने फूल भी शर्मा जाए और मोहब्बत के सामने दिल भी अपना सलीका भूल जाए। अब ये दिल की गुस्ताखी कहिए या प्यार की अदा, लेकिन अगला गीत कुछ ऐसी ही मीठी शरारत और नफासत लिए हुए पेश है। लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, जिंदगी के सफर में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनकी कोई योजना नहीं होती, लेकिन वही मुलाकातें दिल पर सबसे गहरी छाप छोड़ जाती हैं, है ना। कभी राह चलते कोई अजनबी या फिर अपनों से भी ज्यादा अपना लगने वाला कोई ऐसा मिल जाता है जो बिल्कुल अपना सा लगने लगता है। कुछ ऐसे ही खूबसूरत एहसास और अनकही यादों को समेटे हुए है अगला सदाबहार गीत। लीजिए सुनिए।

इश्क वो जज्बा है जो सरहदें नहीं देखता, ना दुनिया की रस्में ना जमाने की बंदिशें मानता है, है ना। मोहब्बत जब सच्ची हो तो उस पर हिचक नहीं होती, और जब दिल किसी का हो जाए तो फिर इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बस हाँ, मोहब्बत की राह में जो भी मिल जाए हंसकर उसे प्यार कर लेते हैं और मौसम आशिकाना हो जाता है।

0: से गेट के साथ रांची मेलेडीज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। दीजिए इजाजत अपने दोस्त कार्यक्रम की होस्ट राजश्री को। श्रोताओं, दिन के 4 बजने वाले हैं और इस वक्त आप सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार। तो लीजिए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 1 महीने तक चलेगा। इसका उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज जमशेदपुर के बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर कॉलेज के 132 MBBS छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने छात्रों से तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए मरीजों की बेहतर सेवा करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को कोडरमा के हजारों छात्र छात्राओं को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से हस्तांतरित कर सर जेसी बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह से संबद्ध किए जाने पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं से एक बार फिर अवगत कराया। रिम्स राजपत्रित कर्मचारी संघ बैनर तले रिम्स के नर्सिंग स्टाफ ने डायरेक्टर ऑफिस का घेराव और विरोध प्रदर्शन किया। बकाया वेतन भुगतान को लेकर विरोध प्रदर्शन में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मी, स्थायी कर्मचारी और पीजी डॉक्टर भी शामिल रहे। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के आश्वासन पर आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन नारकोश के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 किलो से अधिक गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। IIT दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने कॉमन रैंक लिस्ट में टॉप रैंक हासिल किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आओ साथ चले।

श्रोताओं, कार्यक्रम आओ साथ चले की एक और कड़ी के साथ मैं सिंधु मिश्रा आप सब से फिर मुखातिब हूँ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे साइबर सुरक्षा आज की जरूरत इस विषय पर। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता आज का युग डिजिटल युग है। इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन सेवाओं ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। बैंकिंग, शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, हर क्षेत्र में तकनीक का उपयोग बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल सुविधाएं बढ़ी हैं, वैसे वैसे साइबर अपराधों का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। श्रोताओं, ऐसे में साइबर सुरक्षा आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। अब प्रश्न उठता है कि साइबर सुरक्षा क्या है। इसका अर्थ है इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क और डेटा तक अनाधिकृत पहुंच, चोरी, हमले या नुकसान से सुरक्षित रखना। यह केवल बड़े संगठनों के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि आज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। साइबर अपराधों का खतरा भी दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान समय में साइबर अपराध कई रूपों में सामने आ रहे हैं। मसलन हैकिंग, यानी किसी सिस्टम या अकाउंट को बिना अनुमति के एक्सेस करना। फिर बारी आती है फिशिंग की, नकली ईमेल या

0: लिंक के जरिए लोगों से निजी जानकारी चुराना। ऑनलाइन फ्रॉड तो आम बात हो गई है, बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से पैसे की ठगी इसमें देखी जाती है। आइडेंटिटी थेफ्ट भी साइबर अपराध के अंतर्गत आता है, किसी की पहचान का दुरुपयोग, फिर डेटा को लॉक कर फिरौती मांगना। भारत सहित पूरी दुनिया में ऐसे मामलों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, जिससे लोगों की आर्थिक और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। श्रोताओं, साइबर सुरक्षा क्यों जरूरी है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, आज हम अपनी फोटो, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड, ये सब ऑनलाइन रखते हैं। यदि ये जानकारी गलत हाथों में चली जाए तो गंभीर नुकसान हो सकता है। आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बेहद जरूरी है। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ते उपयोग के कारण वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ गया है। साइबर हमले केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा, सरकारी डेटा और महत्वपूर्ण संस्थानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। व्यापार और उद्योग की सुरक्षा पर भी खतरा हो सकता है। कंपनियों के डेटा और ग्राहकों की जानकारी सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। इसके कई उपाय हैं जिसके तहत हम बच सकते हैं साइबर फ्रॉड से। जैसे मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, पासवर्ड में अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल करें और इसे समय समय पर बदलते रहें। इससे अकाउंट की सुरक्षा और मजबूत हो जाती है। संदिग्ध लिंक और ईमेल से बचें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें। एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर अपडेट रखें, अपने सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें ताकि नए खतरों से सुरक्षा मिल सके। पब्लिक वाईफाई का सावधानी से उपयोग करें, सार्वजनिक नेटवर्क पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचें। श्रोताओं, सोशल मीडिया पर सतर्क रहें, अपनी निजी जानकारी जैसे पता, फोन नंबर, इन सबको सार्वजनिक ना करें। सरकार और संस्थानों की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण है। सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा भी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष हेल्पलाइन और पोर्टल बनाए गए हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। सिर्फ तकनीकी उपाय ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक होना भी जरूरी है। अक्सर लोग जानकारी के अभाव में धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, इसलिए स्कूलों, कॉलेजों और समाज में साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षा देना बहुत जरूरी है। साइबर सुरक्षा आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता है। श्रोताओं, यह केवल तकनीकी विषय नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमें अपनी डिजिटल आदतों को सुरक्षित बनाना होगा और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करना होगा। यदि हम सावधानी और समझदारी से इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो हम साइबर अपराधों से काफी हद तक बच सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सुरक्षित डिजिटल जीवन ही आधुनिक जीवन की सफलता की कुंजी है। श्रोताओं, अभी हमने आपसे चर्चा की साइबर सुरक्षा आज की जरूरत इस विषय पर। आज इसी से जुड़ी विशेष जानकारी करवाने जा रहे हैं, साइबर सतर्कता डिजिटल जीवन की ओर एक सुरक्षित कदम। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं श्री मनोज रतन चौथे, DIG स्पेशल ब्रांच रांची। तो इनसे लेते हैं साइबर सतर्कता डिजिटल जीवन की ओर एक सुरक्षित कदम इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम में। नमस्कार सर।
1: नमस्कार मैडम, और नमस्कार सभी श्रोताओं को जो आज हमें इस माध्यम से सुन रहे हैं।
0: सर, देखा जाए तो डिजिटल माध्यम आजकल काफी बढ़ गया है और नेटवर्क के जरिए बहुत सारे क्राइम भी हो रहे हैं, जिसमें साइबर अपराध को लोग सामान्य रूप से जान रहे हैं और इसके शिकार भी आए दिन लोग हो रहे हैं। सर, साइबर अपराध क्या है और इससे जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं, इस बारे में मैं जानना चाहूंगी और साथ ही हमारे श्रोताओं को भी ये जानकारी करवाना चाहूंगी।
1: बिल्कुल मैम, ये जो साइबर का आपने पॉइंट उठाया है, ये आज के समय में बेहद रेलेवेंट है। और हम लोग जब फील्ड में काम करते हैं तो हमें कई तरह के ऐसे विक्टिम्स देखने को मिलते हैं जो कि केवल अज्ञानतावश या अवेयरनेस के अभाव में साइबर के या साइबर फ्रॉड के वो विक्टिम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो केवल अभी साइबर फ्रॉड ओटीपी मांगने तक, या सामने वाला आपको मैं बैंक का एम्प्लॉय बोल रहा हूँ, आपका डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का नंबर आप शेयर करिए, ओटीपी शेयर करिए, यहाँ तक सीमित नहीं रहते हुए उसका एक्सपांशन काफी बड़ा हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज के तिथि में यह है कि आज हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, और खास करके लगभग सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, जो कि एक बहुत अच्छा टूल है आपको अच्छा काम करने के लिए, लेकिन वो साथ ही साथ आपको पोटेंशियल विक्टिम भी बनाता है साइबर फ्रॉड का भी। क्योंकि जब आपके हाथ में स्मार्टफोन होता है तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं वल्नरेबल होते हैं, साइबर फ्रॉड आपके साथ होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और उसी के लिए मुझे लगता है कि कई सारी सावधानियां, कई सारे अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने का काम लगातार भारत सरकार की जो I4C जैसी संगठन है, या स्टेट गवर्नमेंट के भी हमारे जितने भी ऑर्गन से, उनके द्वारा किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग उसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके बारे में श्रोताओं को भी जागरूक करने की कोशिश करेंगे।
0: ये बात आपने बिल्कुल सही कही, और डिजिटल अरेस्ट वाली समस्या आजकल आए दिन देखा जा रहा है कि इससे जुड़े बहुत सारी शिकायतें हमें मिल रही हैं और लोग इसके शिकार घर बैठे हो जा रहे हैं। सर, इसके बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
1: सबसे पहले तो मैं शुरुआत में ही आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कॉन्सेप्ट पुलिसिंग में नहीं होती है। पुलिस किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है, और भारत सरकार द्वारा भी पिछले 1-1.5 साल से लगातार अभियान चला करके इस बात को सभी लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। और हाल ही में आपको पता होगा कि जुलाई 2024 से नए BNS और BNSS लागू किए गए थे, जो पहले की IPC और CRPC हुआ करते थे। और उसके बाद कई लोगों को ये भ्रम हुआ या मिसअंडरस्टैंडिंग रही है कि BNS या BNSS के चेंज होने के बाद में अब लोगों को डिजिटली भी अरेस्ट किया जा सकता है, या फिजिकली अरेस्ट करने के बजाय डिजिटली लोगों को अरेस्ट में रखा जा सकता है। पर मैं आप सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कॉन्सेप्ट BNS या BNSS में इंक्लूडेड नहीं है। पुलिस किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर आपको कोई भी इस तरह का फोन या मैसेज आता है कि आपका कोई पार्सल कस्टम्स द्वारा पकड़ा गया है, या कोई आपके पार्सल में किसी कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस जैसे कि गांजा, अफीम, या कोई रेयर चमड़े का बैग, पर्स आपके सामान में पाया गया है, और आपको उसके लिए हम डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं और आपको आपके घर में रहना पड़ेगा, तो आपको समझना होगा कि ये सामने वाला व्यक्ति एक साइबर फ्रॉडस्टर है, और वो आपसे पैसा ठगने के लिए केवल इस तरह के ये तरीके आजमाता है। तो आपको इस तरह के जो मैसेजेस है, इस तरह के जो कॉल्स है, उनको 1930 1930 एक नंबर है जो साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन है, जो आपको साइबर फ्रॉड होने के स्थिति में आपको हेल्प मुहैया कराएगा। और आपको जो फोन से या नंबर से मैसेज आया है, उस नंबर को तत्काल ब्लॉक करने का भी काम 1930 के हेल्पलाइन आपके लिए कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में डिजिटल अरेस्ट आज एक रूप ले चुका है, और मुझे यकीन है कि जो हम लोग अवेयरनेस के कार्यक्रम कर रहे हैं विभिन्न जगहों पे, विभिन्न चैनलों पे, उससे निश्चित रूप से इसमें लोग अवेयर होंगे और इस समस्या में निश्चित रूप से कमी आएगी।
0: सर, इसमें हमने भी देखा है कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक वीडियो कॉल आता है और उसमें एक पुलिस की वर्दी पहनकर बैठे हुए एक व्यक्ति मिलता है, जो देखा जाता है कि अगर हमारे परिवार में कोई बच्चा है तो उस बच्चे की आवाज की भी कॉपी की जाती है, और फिर कहा जाता है कि बच्चा हमारी कस्टडी में है और कुछ गलत कृत्य करते हुए पाया गया है, इसलिए आपको थाने में इतनी रकम जमा करानी होगी अगर इसे छुड़वाना है। ये कहाँ तक सही है?
1: ये भी एक साइबर फ्रॉड का ही तरीका है, और कभी भी पुलिस इस तरह का कॉल आपको नहीं करेगी, ना ही आपको वीडियो कॉल करके इस तरह का कोई निर्देश या आदेश देगी कि आपका बच्चा या आपके घर का कोई भी व्यक्ति हमारे पास थाने में लॉकअप में बंद है और आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। और इस तरह का अगर कोई बात आपके सामने आता है तो आप तत्काल इसको नजदीकी थाने के माध्यम से इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि ये 99% से ज्यादा, मैं तो कहूंगा कि 100% ये साइबर फ्रॉड ही होता है। कभी भी कोई पुलिस आपको इस तरह का पैसा देने के लिए फोन नहीं करेगी, अगर वो जेन्युइन पुलिस वाले हैं तो। और डिजिटल अरेस्ट या इस तरह का जो भी मामला होता है, ये लीगली कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ही पुलिस इस तरह के डिजिटली अरेस्ट करने की कोई पावर रखती है।
0: और सर, देखा गया है कि जब अभिभावकों के पास इस तरह के कॉल्स आते हैं, तो चूंकि ये मामला उनके बच्चे से जुड़ा हुआ होता है, तो वे काफी घबरा जाते हैं और तत्काल उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, और जिस वजह से वो इस ठगी के शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसे अभिभावकों को आप क्या कहेंगे?
1: मैं सबसे पहले ऐसे अभिभावकों को मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं तो कुछ एक चेकलिस्ट है, उसको आप लोग ज़रूर फॉलो करें। पहले तो आप ये तय कर ले कि आपका बच्चा मोबाइल हैंडल करने के लिए सक्षम है, उसका उम्र उस मोबाइल को हैंडल करने के लिए उस उम्र का वो मकाम पे वो पहुंच चुका है, ये सबसे पहली बात है। दूसरा, आप रेगुलर उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री या यूट्यूब में वो क्या एक्टिविटी करता है या ब्राउजर में वो क्या एक्टिविटी करता है, आप रेगुलर उसको देखते रहे। तीसरी चीज, आप उसके पास जो भी मोबाइल दे रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल ऐप डाउनलोड ना करें, ना ही उस फोन पे किसी तरह के ओटीपी लिंक्ड मोबाइल आप उसके साथ रहने दें। कई बार ये होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, सामने का कोई अननोन आदमी फोन करके उससे ओटीपी पूछ सकता है और बच्चे अनजाने में भी ओटीपी शेयर कर सकते हैं, इसीलिए उनके हाथ में इस तरह का कोई भी मोबाइल डिवाइस नहीं देना चाहिए जो कि आपके बैंक के खातों से या किसी भी तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो डीमैट अकाउंट्स हो या अन्य किसी तरह के अकाउंट्स हो जिसके साथ वो जुड़ा हो, ताकि आपके साथ इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स नहीं हो पाए। साथ ही जो बच्चे वेब ब्राउजिंग करते हैं उसको नियंत्रित करना जरूरी होता है। आजकल हम लोग रेगुलर पुलिसिंग के दौरान ये पाते हैं कि कई सारे जो एडल्ट बच्चे हैं वो कई बार जो पॉन है उसके भी आदि हो जाते हैं। तो मेरी अभिभावकों से एक अपील रहेगी कि लगातार आप अपने बच्चों का ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करते रहे, वो किस साइट्स को विजिट कर रहे हैं, किस तरह के वो वीडियोस देख रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ वो बात कर रहे हैं आदि अगर आप चेक करते हैं। और बच्चों की जरूरी होता है कि काउंसलिंग पेरेंट्स के द्वारा की जाए। कई बार अभिभावकों के और बच्चों के बीच में एक पर्दा रह जाता है और बच्चे जो बाहर हुई चीजें हैं वो घर में आकर के बताने से परहेज करते हैं। बच्चों को अगर ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर मैंने घर में आकर के बाहर जो चीज हुई है वो अपने माता पिताजी को अगर मैंने बताया तो उसको उनके द्वारा पॉजिटिवली लिया जाएगा, मुझे उल्टी डांट नहीं पड़ेगी और उस समस्या का मुझे हल मिल सकता है। ये बच्चे में जब आत्मविश्वास आप जगाने में सफल रहेंगे, मुझे लगता है कि बच्चा इस तरह के कभी गलत राह पे नहीं चलेगा। और उसको अगर कोई परेशानी भी आती है तो निश्चित रूप से अपने अभिभावकों की, अपने शिक्षकों की वो सहायता ले पाएगा और वो फ्रीली उस बात को बोल सकता है। तो मुझे लगता है कि अभिभावकों इन चीजों का वो ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को साइबर फ्रॉड या इस तरह के जो भी उससे रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं उसमें कमी लाने में मदद मिल सकती है।
0: बिल्कुल सही बात है सर। और बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए आपने बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया। अभी एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाएं जो घर में हैं, उनके हाथ में भी मोबाइल है, मोबाइल फोन्स का वो भी काफी अच्छे खासे रूप में प्रयोग कर रही हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना या फिर कुछ सामान वगैरह मंगवाना। कई बार देखा जाता है ऐसे लिंक भी उनके पास शेयर किए जाते हैं, जिसको कहा जाता है कि ये क्लिक करने से कुछ गिफ्ट, कुछ उपहार आपको मिलेंगे, और इसके जरिए भी कुछ फ्रॉड्स

0: देखे जाते हैं। सर, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दें।
1: बिल्कुल, ये आज सबसे बड़े मात्रा में होने वाला एक फ्रॉड के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। आपके फोन पे कई बार SMS आते हैं या WhatsApp पे मैसेज आता है कि ये लिंक आपको मिला है, डिस्काउंट कूपन इसके द्वारा डाउनलोड होगा, या एक APK फाइल होती है जिससे कि कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको कहा जाता है, और जैसे ही उस लिंक को आप क्लिक करते हैं या उस APK फाइल को आप डाउनलोड करके कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, आपके फोन का पूरा एक्सेस दूसरे किसी व्यक्ति के हाथ में चला जाता है, और वो व्यक्ति रिमोटली आपके फोन को या तो कंट्रोल कर सकता है, या आप अपने फोन पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालना हो, OTP हो, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स डालना हो, या अन्य किसी तरह के पर्सनल व्यक्तिगत आपके जो मैसेजेस होते हैं वो सबको वो दूर बैठे देख सकता है, और उसका वो निश्चित रूप से मिसयूज कर सकता है और करते भी है। तो सबसे पहला मेरा अपील सभी श्रोताओं से यही रहेगा कि आप किसी भी अननोन व्यक्ति द्वारा भेजा गया लिंक को कृपया क्लिक नहीं करें, और कोई भी इस तरह का ऐप या लिंक जो आपको कहता है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा या इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ कैशबैक मिलेगा, कृपया उन चीज़ों से आप परहेज करें। जो ऑथेंटिक साइट्स है, शॉपिंग की वेबसाइट से, उसका आप कृपया यूज़ करें।
0: बिल्कुल सही बात है। और सर, अमूमन देखा गया है कि हम ATM कार्ड का भी प्रयोग करते हैं, बैंक से हमारा ATM लिंक्ड होता है, कई बार बैंक के अधिकारियों का भी फोन आता है कि इसे आपका ब्लॉक किया जा रहा है कार्ड को, आप जल्द से जल्द यहाँ KYC वगैरह के लिए OTP जो भेजा जा रहा है वो बताएं। तो ऐसे हालात में भी लोग घबरा जाते हैं और बैंक की बात आती है तो उन्हें थोड़ी घबराहट महसूस होती है, और ऐसे में वो अपना लिंक के माध्यम से जो OTP आता है वो शेयर करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो एक सतर्कता और एक जानकारी के लिए, आप जागरूक रहने के लिए हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे?
1: जब आपको कोई भी फ़ोन आता है और जिसमें कहा जाता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ और आपका KYC एक्सपायर होने वाला है, या आपको कोई डेटा या ब्यौरा मांगा जाता है, तो मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि बैंक्स आपको कभी भी आपका व्यक्तिगत डेटा नहीं पूछेंगी। आपको यदि कोई डेटा जमा भी करना है तो आपको आपका जो होम ब्रांच है या नज़दीकी उस बैंक का जो ब्रांच है, आपको वहाँ जा करके उस कॉल के सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए, और वाकई में अगर आपका KYC एक्सपायर हो रहा है या और एडिशनल डॉक्यूमेंट बैंक अगर मांग रहा है तो आपको फिजिकली उस बैंक में जाकर के देने चाहिए। बैंक आपसे कभी भी आपके व्यक्तिगत डिटेल्स जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका वोटर ID नंबर, आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर, या किसी तरह का OTP आपसे नहीं पूछता है, और ना ही उनको पूछने की सरकार द्वारा इसकी परमिशन दी गई है। इसलिए ये सबको मन में एक बार कन्फर्म रूप से रख लेना चाहिए कि आपको कोई भी व्यक्तिगत डिटेल किसी भी फोन कॉलर को शेयर नहीं करने हैं। यदि आप उसको शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं साइबर ठगी के शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है। और सर, जितनी तेजी से हमने तकनीकी क्षेत्र में विकास किया है, जितने गैजेट्स हमारे पास हमारे हाथों में आ गए हैं, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स, तो इनके जरिए हम साइबर फ्रॉड के शिकार हो जा रहे हैं। जाने और अनजाने दोनों ही ढंग से ये फ्रॉड हमारे साथ हो जा रहा है। अमूमन देखा जाता है कि ग्रामीण इलाके के जो भोले भाले लोग हैं इसके गिरफ्त में ज़्यादातर आ जा रहे हैं, चाहे वो वजह उनकी अशिक्षा हो, गरीबी हो, या फिर कोई और वजह या जानकारी का अभाव हो। तो सर, ऐसे लोगों को आप सतर्क रहने के लिए अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे?
1: जैसे आपने कहा कि ग्रामीण भागों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो इस तरह के फ्रॉड्स को ज़्यादा शिकार होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जागरूकता नहीं होती है। कई बार जो हम लोग जागरूकता के अभियान चलाते हैं वो शहरों तक ही सीमित रह जाते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में जानकारी नहीं मिल पाती है। परंतु मैं सबको, और आकाशवाणी मुझे लगता है ये एक सबसे अच्छा माध्यम है कि भारत के हर कोने तक ये माध्यम पहुँचता है, और हम लोग जो भी

0: इंफॉर्मेशन यहाँ दे सकते हैं, वो भारत के हर एक कोने में हम लोग पहुँचा पाएंगे। तो इस तरह के माध्यमों का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और जो साइबर हाइजीन है या जो साइबर सैनिटेशन है, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, या इवन आपके जो CCTV कैमराज हो, ये सारे ससेप्टिबल है, ये सारे आपके डिवाइसेस वल्नरेबल है साइबर फ्रॉड के लिए। जो भी साइबर रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाती है विभिन्न न्यूज़ चैनल के माध्यमों से, विभिन्न सोशल मीडिया हैंडलों के माध्यम से, जो वेरीफाइड हैंडल से, या इस तरह के जो इंटरव्यूज होते हैं दूरदर्शन पे, आकाशवाणी पे या विभिन्न चैनलों पे, उस पे दिए जाने वाले इन सुरक्षा के जो नियम हैं, उसको यदि सभी लोग अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, तो काफ़ी हद तक मुझे यकीन है कि इस तरह के जो फ्रॉड से, उससे हम लोग बच सकते हैं। साइबर फ्रॉड करने वाले लोग और पुलिस, ये एक तरह से बिल्ली और चूहा का खेल है। वो हमेशा ही एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा ही एक नया तरीका इजाद करने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों को ठगा जाए, और पुलिस भी उन तरीकों को ढूंढ करके उस तरीकों के पीछे जो लोग होते हैं उनको पकड़ने की और उनको सजा दिलाने की कोशिश लगातार रहती है। परंतु इन दोनों के बीच में जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है, वो होते हैं हमारे आम नागरिक, जो कि इन साइबर ठगों के वो बलि चढ़ जाते हैं। जो साइबर अवेयरनेस की जो बातें आज हम लोगों ने यहाँ कही है, वो सभी लोग अगर अपनाते हैं और थोड़ा सा ध्यान वो अपने एक्टिविटी पर, हम क्या डाउनलोड कर रहे हैं, हम किस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, हम किसके साथ क्या जानकारी शेयर कर रहे हैं, उस पे अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो काफ़ी हद तक हम लोग इस तरह के साइबर फ्रॉड से बच भी सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये भी फिर दोहराना चाहूँगा कि जो बच्चे आपके मोबाइल यूज़ करते हैं, उनको निश्चित रूप से आपको निगरानी रखनी पड़ेगी, वो फ़ोन पे क्या देख रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कम उम्र के चलते और दूसरा कम एक्सपोजर के चलते, कम जागरूकता के चलते साइबर बुली होने का या साइबर फ्रॉड उनके साथ होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो बड़े बुजुर्गों के साथ ही बच्चों का भी जो साइबर अवेयरनेस है, वो स्कूलों के माध्यमों से और कॉलेजों के माध्यमों से मुझे लगता है कि हमें बढ़ाना पड़ेगा, और उसके दिशा में हम लोग लगातार कार्य भी कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं जिसको सभी लोग अगर फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो काफी हद तक हम लोग को रिलीफ मिल सकती है। और जो साइबर हेल्पलाइन नेशनल लेवल पे जारी की गई है 1930, उसका आप अधिक से अधिक अगर इस्तेमाल करते हैं, आपको किसी तरह का कोई फ्रॉडुलेंट कॉल आता है या आपको आशंका है कि इससे आपको साइबर ठगी हो सकती है, उस नंबर को तत्काल आप 1930 जो कि टोल फ्री नंबर है पे आप रिपोर्ट करें, और उस नंबर के ऊपर में तत्काल एक्शन इनिशिएट हो सकती है। तो ये मुझे लगता है कि जो आम लोग हैं, जो विक्टिम होने के सबसे ज़्यादा जिनकी आशंका बनी रहती है, उनके द्वारा थोड़ा सा भी जागरूकता दिखाया जाता है तो काफ़ी हद तक हम इस साइबर फ्रॉड को लगाम लगा पाएंगे।
1: सर, स्टॉक एक्सचेंज में भी लोग पैसे धड़ल्ले से लगा रहे हैं, कई लिंक आते हैं उसके लिए भी, और उसमें करोड़ों तक की ठगी हो जाती है लोगों के साथ। तो इसके अवेयरनेस के लिए, इसमें सजगता के लिए आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा को आपने टच किया है। खास करके कोविड के बाद में लोगों में स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट में काफ़ी रुचि दिखाई जा रही है, और उसी का फायदा उठाते हुए साइबर फ्रॉड्स द्वारा कई तरह के लिंक्स, कई तरह के डमी डीमैट अकाउंट ऐप्स बनाए जा रहे हैं, और उसमें पैसे लेने के बाद में वो पैसे गायब हो जा रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड टिप्स आते हैं, तो कृपया उसके ऊपर यकीन नहीं करें। आज भी आप देख सकते हैं, आपको कई तरह के SMS आते हैं जिसमें आपको एक स्टॉक का नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि ये स्टॉक अभी ऊपर जाएगा, इससे आपको मल्टीफोल्ड पैसा आप बना सकते हैं। तो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करें, ये मैनिपुलेटिव स्टॉक टिप्स होते हैं। वो पंप एंड डंप नाम की एक स्कीम होती है, उसके तहत स्टॉक को पहले ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर नीचे गिराने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद फिर जो आम जनता है, इन्वेस्टर्स है, उनका पैसा हड़पने की एक

0: कोशिश होती है। तो इस तरह की जितने भी ये साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा अपनाई जाती है तरीके, उसको कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और खास करके पोस्ट कोविड जो डीमैट अकाउंट रिलेटेड फ्रॉड से इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। कई बार आपको एक लिंक आ जाती है और कहा जाता है कि आप अगर ये डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको कुछ मनी बैक दिया जाएगा या कैश बैक दिया जाएगा, और उस लालच में लोग उस तरह के लिंक्स पे ऐप्स पे क्लिक करते हैं और अपना पूरा का पूरा बैंक का खाता खाली करवा के बैठ जाते हैं। तो थोड़ा सा अवेयरनेस आप अगर इसमें अपनाते है, और आज के डेट में आपके पास आपके हाथ में इंटरनेट है, किसी भी आपको सस्पिशियस लिंक का पता लगाने के लिए कई तरह के एप्स उपलब्ध है, आप उसका सहारा ले सकते हैं ताकि इस तरह के जो भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं उससे आप बचे हुए रहे।
1: सर, साइबर अपराध से जुड़ी क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं और किस तरह से हम इस ठगी के शिकार हो सकते हैं? आपने काफी विस्तार से इस बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दिया, और सर कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद मैडम, और मुझे आशा है कि आज के कार्यक्रमों से हमारे श्रोताओं को भी काफी सहायता होगी, और अगर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर हम एक भी साइबर फ्रॉड होने से अगर बचा ले तो मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम असफल हुआ। धन्यवाद, जय हिंद।
2: इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चलें। प्रस्तुति स्वर सिंधु मिश्रा की थी और प्रस्तुति नूतन प्रसाद का। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगले कार्यक्रम से पूर्व आइए आज के कुछ कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते चलें। अब से कुछ देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम, संध्या 5 बजे, और संध्या 6 बजे आप सुना करते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार, और संध्या 7 बजे का वक्त हुआ करता है प्रादेशिक समाचारों का। पांच बजकर 2 मिनट पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवाणी। कार्यक्रम में आज के लिए चर्चा का विषय होगा ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी इतिहास के बारे में, आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रोचक तथ्य। पांच बजकर 30 मिनट पर श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक। कार्यक्रम में आज आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे साझा जिम्मेदारी प्यारी किलकारी, बच्चों को दें सुरक्षित माहौल। कलाकारा नरगिस की जयंती पर आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे अभिनय की पाठशाला नरगिस। मेहनतकश माताओं को आराम और सम्मान, मजदूरी के साथ सेहत का ध्यान, पीएम मातृ वंदना योजना। 6:02 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा उन्नत बीज का चयन कैसे करें, साथ ही आप जानकारी पाएंगे डॉक्टर परवेज आलम से खरीफ आने से पहले खेत की तैयारी। 6:30 पर कार्यक्रम हमारी दुनिया। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा तनाव के कारण और बचाव, सुनहरे भविष्य की ओर हमारे बढ़ते कदम, साथ ही आप सुनेंगे डॉक्टर सुनीता कुमारी गुप्ता की पंच परगनिया वार्ता, विषय है सकारात्मक सोच रखें। 7:15 पर कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आज का यह कार्यक्रम उरांव भाषा में है। कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी परिश्रम से ही सफलता संभव, साथ ही आप जानकारी प्राप्त करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में। आयोजित कार्यक्रम बुनियाद आप सुन सकते हैं इसी सभा में 7:45 पर, और रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा में। 8:10 से आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम

वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। कार्यक्रम हमारी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 पर उर्दू में समाचार। रात्रि 10:00 फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनहरी यादें में, 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित सियाराम तिवारी से गायन। श्रोता इस समय हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, कार्यक्रम है सांझ सरगम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं अलका याग्निक, कुमार शानू और पी सुनंदा को फिल्म रंग में। गीत रचना समीर की है, संगीत नदीम।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: कार्यक्रम सांझ सरगम में आगे सुनते हैं फिल्म दिल का क्या कसूर में कुमार शानू आशा भोसले को. शब्द रचना मदन पाल की है, संगीत नदीम श्रवण का.

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं कुमार शानू और आशा भोसले को फिल्म जान तेरे नाम में। शब्द रचना सईद राही की है, संगीत नदीम श्रवण का।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक उपयोग, नागरिक सुविधाओं, शहरी एवं ग्रामीण विकास कार्यों के लिए झारखंड सरकार को दान की जाने वाली

निजी भूमि के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों को मुद्रांक शुल्क और निबंधन शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया है। यह छूट पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के तहत सरकार द्वारा चिन्हित और अधिसूचित भूमि से संबंधित दस्तावेजों पर भी लागू होगी। अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा इसे 27 मई 2026 को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक से स्वीकृति प्राप्त है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज जमशेदपुर के बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर कॉलेज के 132 MBBS छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने छात्रों से तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए मरीजों की बेहतर सेवा करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को कोडरमा के हजारों छात्र छात्राओं को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से हस्तांतरित कर सर जेसी बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह से संबंध किए जाने पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं से एक बार फिर अवगत कराया। दुमका में स्वास्थ्य सहायकों ने 8 माह से मानदेय भुगतान नहीं होने पर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर मांग पत्र सौंपा और 5 दिनों के भीतर लंबित मानदेय का भुगतान करने की मांग की। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक दंपति भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर के साथ 7,000 रुपए अधिक कैश भी जब्त किए गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह के तहत आज साहिबगंज वन प्रमंडल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग समेत दर्जनों वन्य कर्मियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारी आज की इस संध्याकालीन सभा में। आज की इस सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोता दोस्तों की हम सफर हूँ मैं संगीता। आइए करते हैं आज के इस सांध्यकालीन सभा की शुरुआत और आपको देते हैं जानकारी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद श्रोताओं, यानी कि संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता को हमने आपके लिए सजाया है एक ही गायक कलाकार मुकेश केसर से सजे चंद चुनिंदा गीतों के साथ। संध्या के 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या 6:00 प्रसारित होंगे आकाशवाणी रांची से मुख्य समाचार, और संध्या के 6:02 पर आप सुनेंगे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा। हमारे युवा दोस्तों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम युवाणी, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा संध्या के 6:30 का। संध्या 7:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।

संध्या के 7:10 पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी दिल्ली से विशेष श्रृंखला का कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष, विषय रहेगा गरीब कल्याण। आज आप इस कार्यक्रम की पहली कड़ी सुनेंगे। रात्रि के 7:45 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम रजनीगंधा को लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे रात्रि के 8:00। रात्रि के 8:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। यहीं से प्रसारित News@9 का प्रसारण होगा रात्रि के 9:00। रात्रि के 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को, जो कि प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। रात्रि के 10:00 आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल, और 10:30 पर प्रसारित होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11:00 आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और रात्रि के 11:10 पर श्रोताओं हमारे आज के सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से FM के 101.7 MHz पर। आइए आपका करते हैं हमारे आज की सांध्यकालीन सभा की शुरुआत, और सुनवाते हैं आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवाएंगे एक ही गायक कलाकार मुकेश को। कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा यानी कि आपकी रेडियो सखी संगीता का प्यार भरा नमस्कार जोहार। श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता की शुरुआत, और आपको सुनवाते हैं हमारे कार्यक्रम का ये पहला गीत गायक कलाकार मुकेश के स्वर में फिल्म पूरब और पश्चिम से। बोल लिखे हैं इंदिवर ने, धुन है कल्याण जी आनंद जी की।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सफ़र से। आवाज़ जैसा कि आप सभी को पता है गायक कलाकार मुकेश की थी, बोल लिखे थे इंदिवर ने और धुन थी कल्याण जी आनंद जी की। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म कभी कभी से। बोल लिखे हैं सही शाहिर लुधियानवी ने और धुन है खय्याम की।

0: गायक कलाकार मुकेश केसवर में ये गीत आपने सुना फिल्म आनंद से। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: आकाशवाणी चायबासा से हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम गुलदस्ता का। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गायक कलाकार मुकेश को। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म रास्ते का पत्थर से।

फिल्म रास्ते के पत्थर से ये गीत आपने सुना गायक कलाकार मुकेश के स्वर में। कार्यक्रम के आखिर में अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म उपकार से ये गीत गायक कलाकार मुकेश के स्वर में ही।

फिल्म उपकार के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हमने आपको सुनवाया एक ही गायक कलाकार मुकेश को। तो अब इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमें इस कार्यक्रम से विदा दें। नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता। ये आकाशवाणी का चायवासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सुरे का जोहार। श्रोताओं, हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा में हम बातें करेंगे महिला सशक्तिकरण के संबंध में, मनोरंजन करेंगे लोकगीत से और भेंट वार्ता के माध्यम से भी हम जानकारी लेंगे स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में। श्रोताओं, महिला सशक्तिकरण का मूल अर्थ है अधिकार, या वह शक्ति जो महिलाओं को समान अधिकारों के साथ प्रदान की जाती है। श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि हम भारतीय लोकतंत्र में जहां समतामूलक समाज की बातें आती है, हमारे संविधान ने सभी लोगों को, सभी नागरिकों को समान अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान किया है। और जिस देश में महिला को देवी का रूप माना जाता है, परंतु आज भी आज़ादी के 78 साल बाद भी भारत में महिलाओं को वो अधिकार प्राप्त नहीं हुई है जो उन्हें मिलने चाहिए। यद्यपि भारत के संविधान के अनुच्छेद और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में समान अधिकारों की बातें कही गई हैं, परंतु उन्हें लागू कराने में आज भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। श्रोताओं, जिस देश में नारी शक्ति की आबादी 50% से आबादी हो, उनकी अधिक हो, इसके बावजूद यदि उसकी आर्थिक स्थिति या अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता हो, तो हम उस देश या उस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम पहचान नहीं दिला पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि वो सार्थक कदम उठाने की, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति मजबूत हो और अपने पैरों पर आत्मनिर्भर होकर खड़ी हो पाए। इसके लिए कई कार्यक्रम आयोजन करने की जरूरत है, खास करके कौशल विकास, जिसमें महिलाओं के अंदर एक हुनर होती है, उन्हें पहचानने की जरूरत है। आज कई क्षेत्र में महिलाएं अग्रणीय कदम उठा रही हैं, कई मुकाम पहुंच चुकी हैं, उसमें कमियां नहीं हैं, कुछ कर गुजरने की, परंतु उन्हें मौका देना होगा। आज वर्तमान समय में वेतन में असमानताएं दिखाई देती हैं, सीमित अवसर उन्हें मिलती है। ऐसी स्थिति में हमें उन चीज़ों को हटाना होगा ताकि भारत में जो विकास की जो गति है वो तीव्र गति से होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये 50% आबादी महिलाएं समान रूप से कंधे से कंधे मिला के काम नहीं करेगी, हमारा देश एक विकासशील ही रहेगा। विकसित राष्ट्रों के समान यदि हमें अपने राष्ट्र को विकास के पथ पर पहुंचाना है, तो कई रूढ़िवादी विचारधाराओं से हमें उन्हें मुक्ति होना होगा। और आने वाले 21वीं सदी

21वीं सदी के हिसाब से हमें सोचना होगा। आज व्यवसाय के क्षेत्र में भी महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं और उन्हें मौका देने की ज़रूरत है। इसके लिए विधायिका जहां हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, उन जगहों पे हमें महिलाओं की प्रतिनिधित्व को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि जो अधिनियम, जो पॉलिसी, जो योजनाएं महिलाओं के लिए होनी चाहिए, उसके लिए महिलाएं बेहतर तरीके से बना सकती है। जुडिशियल के क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे आना होगा। इसके साथ साथ खास करके विधायिका, जिसे हम लोकसभा या संसद हम कह सकते हैं, राज्यसभा है, यानी संवैधानिक संस्थाओं में महिलाओं को अपनी पहुंच सुनिश्चित करनी होगी, ताकि अपने हितों के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए वो कारगर तरीके से नियम अधिनियम बना सकें। यदि इन चीज़ों को देखते हुए हम अपने योग्य उम्मीदवारों को, महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका देते हैं, तो निश्चित ही हमारा राष्ट्र महिला सशक्तिकरण के संबंध में अग्रणी भूमिका निभाएगी। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए हम मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

0: श्रोता, अभी हम नागपुरी लोकगीत से मनोरंजन कर रहे थे। इस लोकगीत के बाद आइए सुनते हैं यह संदेश।
1: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आद्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना

0: तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
1: श्रोताओं, इस संदेश के बाद आइए हम भेंटवार्ता के माध्यम से हम जानकारी लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में।
2: सच की राह पर थोड़ा पिछड़े हुए हैं, इसीलिए हमारी स्वच्छ भारत मिशन, भारत सरकार ने ये प्रयास रहता है कि हमारे हर गांव में शौचालय का निर्माण हो और शौचालय के इस्तेमाल हो, जिससे हमारे गांववासी एक स्वच्छ जीवन जी सके और आर्थिक दृष्टिकोण से भी उसका सुधार हो, हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहे और हम प्रदूषण से मुक्त हो, हमारे घर के बहू बेटियां, बहन माँ सब अपना इज्जत से बचे रहेंगे, जिसको आज खुले में शौच करने में जाने से इतना सारी तकलीफ होती है, इतना सारी घटनाएं घटती है जो कि आज हमारे समाज के लिए वो बहुत ही लज्जाजनक बात है। ये इसका मूल मकसद रहा। दूसरा है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, वो है पानी। ये पानी को स्वच्छ रखने के लिए आज ये इतना महत्वपूर्ण हो गया कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोग बसवास करते हैं, उन लोग खास करके तालाब नदी कुआं का इस्तेमाल करता है और वो पानी पीते हैं, उसी पानी में नहाते हैं और खुले में शौच होने के कारण वही गंदा चीज़ हमारा पानी में घुल मिल जाता है और उसी पानी को हम लोग पेयजल के रूप में पीते हैं, नहाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम बीमार पड़ते हैं और हमारा आर्थिक दृष्टिकोण इतना ख़राब हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी स्थिति आता है कि ऐसा बीमारी हम पड़ जाते हैं जिस बीमारी के चलते हमारे जमीन भी बंधक देना पड़ता है, ऐसा भी नौबत कभी कभी आ जाता है। तो यही सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन ने सोचा क्यों ना हम इस सब चीज़ को एकत्रित करके हम इसका निदान करें और मुख्य उद्देश्य इनका यही है कि हमारा देश भी आगे बढ़े, हमारा देश भी स्वच्छ रहे, जो कि हमारा देश गांव का ही है, इसीलिए गांव से ही ये चीज़ शुरू किया गया। पहले गांव को हम ऑडी ऑफ करेंगे, ओपन डेफिकेशन फ्री स्वच्छता, गांव को पूर्ण रूप से स्वच्छता करेंगे, उसके बाद हमारा धीरे धीरे पूरा देश को स्वच्छ बनाने की मकसद हमारा यही है।
1: तो ये लोक सिद्ध संस्था की ओर से जो आप कार्यक्रम किए हैं स्वच्छ भारत मिशन का, तो आप लोग कौन कौन सा स्कीम, कौन कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं?
2: हम लोग खास करके इसको कामयाबी करने के लिए हम कार्य क्षेत्र में, जैसे सरायकेला जिला में दो ब्लॉक हम लोग लोकहित संस्था ने लिया है, राजनगर ब्लॉक और सरायकेला ब्लॉक, और बाकी कोई एनजीओ है पटना एनजीओ, जिन लोग पूरा डिस्ट्रिक्ट के और सब ब्लॉक लिया है। हम लोग खास करके पीआरआई जो है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनका हम लोग अवेयरनेस करते हैं। उसके बाद VWSC विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटी जो है, उसको हम लोग जागरूक करते हैं। उसके बाद है जो आपको LSP है, लोकल सर्विस प्रोवाइडर जो है, उनको भी हम लोग अवेयरनेस करते हैं। इसी तरह उसके बाद CSO जो है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसको भी ये करते हैं। खास करके महिला लोग को हम लोग गांव-गांव में जाकर बैठक करके ये शौचालय के संबंध में जागरूक करते हैं, जानकारी देते हैं कि आप खुले में शौच करने से आपका क्या तकलीफ होता है और इसमें शौचालय में शौच करने से आपको क्या फ़ायदा है। ये चीज़ हम लोग उनको पूरी तरह से जानकारी देते हैं और अवेयरनेस करते हैं, ताकि आज जो जितने सारी हमारा ब्लॉक में बना है, आज उस गांव में उन लोग इसको यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं हम लोग, और हम लोग अवेयरनेस करते जा रहे हैं। और स्वच्छ भारत मिशन का काम है शौचालय हर गांव में तैयार करना।
1: अच्छा, तो ये लोकहित संस्था जो विशेष तौर पर कौन कौन सी योजनाएं अपने द्वारा चला रही है, सरकार को मदद कर रही है, उस पर विस्तृत थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
2: इसमें हमारा है एक PSSRI जो है,
1: क्या है उसका फुल फॉर्म
2: है कि प्रमोशन सैनिटेशन सस्टेनेबल इन रूरल इंडिया।
1: अच्छा,
2: ये है। उसके बाद है आपका पैक्स है।
1: अच्छा, पैक्स के बारे में थोड़ी सी
2: पैक्स बारे में बनाएंगे। पैक्स ये भी एक तरह की हम सरकार की मदद कर रहे हैं, जो काम सरकार कर रही है, जो कुपोषण को दूर भगाना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है, स्कूल में उपस्थिति को पूरा करना है, और आपका पैक्स का मूल मुख्य उद्देश्य ये है कि गांव में जो स्मार्ट कार्ड बन रहे हैं उनका जो अधिकार है,
1: हाँ,
2: वो अधिकार संबंधित जागरूक करते हैं।
1: अच्छा, तो अधिकार संबंधी जागरूक करने के लिए आप किस प्रकार की योजनाएं चलाते हैं, कैसे लाभ दिलाते हैं?
2: हम लोग उसको जो स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड के माध्यम से उसको लाभ दिलाते हैं।
1: अच्छा,
2: और उसके जो BPL कार्ड है उसके माध्यम से उनको लाभ दिलाते हैं। उसमें जो जो उसको मिलने वाला है सरकार की ओर से मदद, बहुत सारे लाभुकों की जानकारी ही नहीं है, कार्ड तो बन गया है लेकिन उनको जानकारी नहीं है।
1: अच्छा,
2: उनको हम लोग एक जगह में इकट्ठा करते हैं, गांव गांव में जाके बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं, और वो सब हम लोग चयनित करते हैं कि किसको किसको लाभ नहीं मिला है। वो लाभ के लिए हम लोग ब्लॉक से लेकर जिला तक की जोगाजोग करते हैं और जोगाजोग करके उसको लाभ दिलाते हैं।
1: अच्छा, तो ये कुपोषण से मुक्ति के लिए आप लोगों के पास किस प्रकार की योजनाएं आती है, किस प्रकार के कार्यक्रम आप चला रहे हैं?
2: कुपोषण को ये करने के लिए जैसे पहले तो हम लोग गांव में महिला पुरुष सभी को लेकर बैठक करते हैं। बैठक में वहाँ का जो आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं, स्वास्थ्य सहाया है, NM है, इन लोग से मदद हम लोग लेते हैं और उन लोग से जानकारी लेते हैं कि आपका एरिया में, आपका क्षेत्र में, आपका जो आंगनबाड़ी सेंटर में जितना दर्ज है इसमें कौन कौन बच्चा कुपोषित है और ये आज तक आपने इसके बारे में क्या किया। तो जो काम शायद उन लोग नहीं कर पाए, हमारा कार्यकर्ता जाके उसको जो उसको लाभ मिलने वाला है कुपोषण को भगाने के लिए, कि जिला से संपर्क करने से जाके जो कि उसको मुफ्त चिकित्सा मिल सकता है, वहाँ पर उसको एडमिशन हो सकता है, उसको सारी खर्च सरकार वहन कर सकता है, ये सब जो काम हमारा जो कार्यकर्ता है वो ये सब काम उन लोग करता है।
1: तो ये कुपोषण से मुक्ति की जरूरत क्यों महसूस हो रही है हमारे लोकहित संस्था को या पूरा देश को?
2: हमारा देखिए लोकहित संस्था का खास करके जिस एरिया में लोकहित संस्था बसा हुआ ये ग्रामीण क्षेत्र है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में माने अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण ये कुपोषण क्या चीज है इसके बारे में उनको पता ही नहीं है कुपोषण।
1: अच्छा,
2: क्या चीज है। तो कुपोषण के बारे में उसको पहले हम लोग अवेयरनेस करते हैं कि कुपोषण है क्या।
1: अच्छा,
2: और इससे हमारा क्या हानि है और आगे चल के हमारा ये क्या और माने समाज को क्या बिगाड़ सकता है।
1: अच्छा,
2: तो आज अगर कुपोषित कोई भी इंसान जिंदा रहे तो उसका जो जनरेशन आएगा वो जनरेशन भी कुपोषित हो सकता है।
1: अच्छा, तो ये कुपोषण का क्या कारण हो सकता है, आप लोग क्या बताते हैं उनको?
2: इसलिए हम लोग यही उसको अवेयरनेस करते हैं कि उसका जो डेली माने दैनंदिन जो खाने पीने का जो प्रक्रिया है, पद्धति है, उसमें उसको प्रोटीन वगैरह ये सब चीज मिला हुआ रहता है कि नहीं रहता।
1: अच्छा,
2: वो उसको मिलता है कि नहीं मिलता है, तो इसके कारण ही कुपोषण आता है। जिससे जैसे जैसे जिस समय माँ अपना गर्भवती हो जाता है तो उस समय उसको जो चीज मिलना चाहिए, जैसे फ्रूट्स मिलना चाहिए, अंडा मिलना चाहिए, मछली मिलना चाहिए, मीट मिलना चाहिए, दूध मिलना चाहिए, हरा सब्जी मिलना चाहिए, ये कम से कम डेली पार्ट टाइम कम से कम उसको मिलना चाहिए, उसको आराम की जरूरत है, ये सब सारी चीज मिलने से कुपोषण अपना पेट से ही दूर हो जाएगा।
1: अच्छा,
2: लेकिन ये नहीं मिलने के कारण कुपोषण हमारा बच्चा जन्म लेता है, इंसान जन्म लेता है।
1: अर्थात शरीर की जो आवश्यकता है पोषक तत्वों
2: जी,
1: की
2: पोषक तत्व
1: है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मतलब जी, इनकी उपलब्धता सुनिश्चित होने से मतलब कुपोषण दूर हो सकता है,
2: दूर हो सकता है।
1: अच्छा, ये तो कुपोषण की बात है। इसके साथ साथ और भी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे खुले में शौच करना
2: जी,
1: उसका क्या दुष्परिणाम हो रहा है? उसको अच्छा हो या कुपोषण से जैसे मुक्त कर रहे हैं उसे हिसाब से शौचालय गांव गांव में हो, इसके लिए क्या कार्यक्रम चला जा रहे हैं? पहले तो ये बताइए कि खुले में शौच का दुष्परिणाम क्या हो सकता है?
2: खुले में शौच का दुष्परिणाम आज जो हमारा एक कुपोषण भी हो सकता है, एक विकलांग भी हो सकता है, आपका प्रदूषण समाज हो सकता है, हम आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हो सकते हैं, हमारे शरीर में जितना तरह का बीमारी है वो बीमारी से हम ग्रसित हो सकते हैं, एमन की ऐसा की है जानलेवा बीमारी जो है जैसे पोलियो, पैरालिसिस, इसका जो 7 विभाग है वो भी उससे भी हम क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।
1: अच्छा, ये शौचालय यदि हम नहीं बनाते,
2: नहीं बनाते खुले में अगर हम शौच करते हैं।
1: अच्छा, ये किस प्रकार का ये होता है?
2: जितने की मतलब जितने खुले में शौच करने से मानव मल में जो जीवाणु पाया गया परीक्षण के दौरान, जो जीवाणु पाया गया जैसे पोलियो हुआ, पैरालिसिस हुआ, ये टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, ये सब का जीवाणु जो है वो मानव मल में ही पाया गया है।
1: अच्छा,
2: और वो खुले में शौच करने के कारण वो जीवाणु हमारा शरीर तक आने के लिए ऐसा माध्यम बना रहा है, जैसे वो पानी में घुलकर हमारा तालाब में जा रहा है, वही पानी भाप पानी में हमसे नहा रहा है, हवा के माध्यम से वो जीवाणु हमारा आपके पानी में कुआं में घुस जाता है, हमारा खुला हुआ खाना में आके वो मक्खी बैठ जाता है, जैसे मक्खी बैठा पैखाना में और वो मक्खी हमारा खाना तक तो पहुंच जाता है, आने का माध्यम हमारा साथ भी आ सकता है, और एक मक्खी एक दिन में 24 घंटा में 3 किलोमीटर तक जा सकता है।
1: अच्छा,
2: तो वही वही मतलब पैखाना में बैठ के वो मच्छी हमारा घर तक आता है, हमारा खाना में बैठता है, हमारा पानी में बैठता है, और वही पानी खाना हम लोग खा रहा है, इसका मतलब डेली किसी ना किसी का पायखाना तो हम लोग खा ही रहा है, तो उसके साथ वो जीवाणु जो है मेरा पेट में गया, और पेट में जाके जो जीवाणु गया जैसे हो पोलियो का हो या मलेरिया को या डायरिया का हो, वो जीवाणु हमारा जो शरीर में जाके प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, और हम मैंने बीमार ग्रस्त होते हैं, डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, डॉक्टर हमको जाके 2000-3000 जो भी हो हमको रकम उसको चुकाना पड़ता है। तो इस तरह से हम एक तरफ आर्थिक दृष्टिकोण से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, और दूसरी बात है कि हम हमेशा हमारा समाज के कोई ना कोई लोग बीमार ही रहता है, आज इस परिवार का कोई है तो कल उस परिवार का कोई है, आज इसका डायरिया हुआ कल उसका मलेरिया हुआ, किसी का टाइफाइड, किसी का अचानक लकवा मर गया, किसी का पोलियो, तो ये चीज हमको अंदाज नहीं रहता है जी हम आज 2 घंटा पहले ठीक थे, ये भी हमको कैसे डायरिया हो गया, आदमी को ये चीज पता ही नहीं है, इंसान को पता ही नहीं है कि हम ठीक थे अभी, लेकिन 2 घंटा के बाद हमारा डायरिया हो गया, हम बीमार पड़ गया, तो ये सब वही जो 2 घंटा पहले हम खाना खाया, खाना खाने के बाद जो हमारा शुरू हुआ तो जीवाणु घुस गया हमारा अंदर, तो इसके चलते हम लोग बीमार हमेशा ही समाज के लोग रहते हैं, और आर्थिक दृष्टिकोण से हम क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं,
1: क्योंकि डॉक्टरी इलाज बहुत ही महंगा होता है,
2: महंगा होता
1: जैसे
2: है।
1: मान लिया आप पथरी हो गए, हाँ। या टाइफाइड हुआ, या हैजा चेचक हुआ, तो ऐसी कई बीमारियां हैं जिसके लिए या तो लाइलाज होती हैं या तो बहुत महंगी होती है,
2: महंगी होती है,
1: और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग उतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है,
2: मजबूत नहीं,
1: तो इनसे निदान या बचाव का एक ही उपाय है कि हम खुले में शौच न करें,
2: खुले में शौच बंद करें, तो ये सब चीज हम लोग पहले मतलब जनगण को
1: जागरूक करा रहे हैं,
2: मैंने जानकारी देते हैं, जागरूक करते हैं।
1: अच्छा,
2: कि देखो इसका प्रमाण, उसके लिए हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्रेशन भी करते हैं।
1: अच्छा,
2: दिखाने के लिए शौचालय का मॉडल वगैरह।
1: अच्छा,
2: और कैसे जैसे नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग उन लोग को जानकारी देते हैं, देखिए खुले में शौच करने से कैसे ये होता है, है उसके बाद वॉल राइटिंग के द्वारा भी करते हैं,
1: समझाते हैं,
2: समझाते वॉल राइटिंग भी कर देते हैं, पेम्पलेट के माध्यम से ये करते हैं, उनको गांव में चिपका देते हैं मेन मेन जगह पर।
1: अच्छा,
2: कुछ वॉल राइटिंग में कुछ मुख्य मुख्य बातें लिख देते हैं कि ये सब खुले में शौच करने से हमारा क्या हानि है,
1: शौच के बाद हाथ धोना चाहिए,
2: हाँ शौच के बाद, वो तो हाइजीन के बारे में तो हम लोग जाते हैं लास्ट में।
1: अच्छा,
2: क्योंकि खाना खाने के पहले और शौच के बाद।
1: अच्छा,
2: साबुन से हाथ धोना एकदम जरूरी है, क्यों जरूरी है, उसका प्रक्रिया कितना है, 7 प्रकार उसका प्रक्रिया है उसका।
1: अच्छा, इस पर भी थोड़े विस्तृत जानकारी दीजिए, किस किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं।
2: हाँ, ये प्रक्रिया है कि हाथ को पहले हम साबुन को एक बार पानी से डुबाया, हाथ में लिया, साबुन को हमारा फेन आ गया।
1: हाँ,
2: फेन आने के बाद हम एक बार उसको हीट करते हैं।
1: अच्छा,
2: मतलब रगड़ते हैं हाथ को।
1: हाँ हाँ,
2: हीट इसलिए करते हैं कि हीट होने से जो जार में वो खत्म हो जाएगा।
1: अच्छा,
2: उसके पहला नंबर की फर्स्ट क्रिया वही है। दूसरा क्या है, उसका जो खंजरी है ऐसे
1: हाँ।
2: ऐसे करके इसको हम रगड़ते हैं, क्योंकि अच्छा। इसमें भी मैला घुस के रहता है। उसके बाद क्या है कि उसको और एक बार दोनों हाथों की तरह से रगड़ के ही करते हैं।
1: अच्छा,
2: लास्ट में ये करते हैं कि देखो, तो मोटा मोटी 1 मिनट से इस प्रक्रिया को हम लोग करने के लिए कहते हैं उसको।
1: अच्छा,
2: तो ये सारी प्रक्रिया करने से क्या है, एक तो हमारा हाथ में हीट हो जाता है, दूसरी बात है कि साबुन का जो ये है उसमें जो डिटर्जेंट मिला हुआ है वो उसको मारता है, दूसरी बात हीट से भी मारता है।
1: अच्छा,
2: तो 1 मिनट तो की क्रिया करने के बाद अगर हम हाथ धो लेते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा हाथ में गंदगी
1: नहीं है,
2: नहीं है या जर्म्स नहीं है।
1: अच्छा।

श्रोताओं, इस संथाली लोकगीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम खेती गृहस्थी अब संपन्न होता है। आप सुरेश चंद्र सोय को विदा दीजिए। जोहार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में संध्या के 6 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचारों का। तो आइए मुख्य समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र।

के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, छात्रावासों की स्थिति और आश्रम स्कूलों के विकास समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में साइकिल उद्योग स्थापित करने की योजना तैयार करने, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने तथा कल्याण विभाग के विद्यालयों में SIR और जनगणना से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को कोडरमा के हजारों छात्र छात्राओं को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से हस्तांतरित कर सर जेसी बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह से संबद्ध किए जाने पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं से एक बार फिर अवगत कराया और सकारात्मक पहल की उम्मीद जताई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उम्मीदवार चयन और चुनावी रणनीति से संबंधित पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। जमशेदपुर दौरे के दौरान परिसदन में मीडिया से बातचीत में बाबूलाल ने कहा कि प्रदेश इकाई ने सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है।

0: अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। सरायकेला में तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर तंबाकू के दुष्प्रभावों तथा इससे बचाव के उपायों की जानकारी देगा। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन वुशु प्रशिक्षण शिविर का आज शुभारंभ किया गया। शिविर में रांची जिले के खिलाड़ियों के साथ साथ राज्य के अन्य जिलों के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। इस दौरान खिलाड़ियों को वुशु खेल की विभिन्न तकनीकों, कौशल एवं प्रतियोगितात्मक तैयारियों का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचार। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायपासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम। क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा।

नया आकाशवाणी रिया चाहे भाषा केंद्र तना एफ एम रिया 101.7 मेगाहर्ट्ज सेवन आई मतना ना अयुपिंग 6 बजे ने 2 मिनट हो बसिकायना कार्यक्रम हो अकड़ा आई मिचे बिन लगे अलिंग बिठा जी उकने मैं हेंदर गई है सभी को अलिंग पे तो जवाहर जाओ दिन लिखा गए एस पूरे लिंग सगमा गुतरे ना को मियन मियन तिरिंग आयु मिचे बिना आयुम लगे एफ एम रेडियो जपा रगे तैन बैन छे मरना तुरंग बैन जपाओ जी इन्हें इला आई मिचे बिना लिंग सभी को अयर जानकारी रिया जगर जे अब निंता ते जो मेना आ जो मिशन बत्सल्य योजना रिया निया जो अब इंकन योजना तना जे अब निंता परिवार सिर्फ जैबिंग रिश्ते समेत दो बनोगे नीना और प्यार सभी लेकाना लोते नीना भैया के अब जिले रे एस पूरे इंकन उनको मिना को अंडो इनको इंगा अपू को बांग को याना इंकन उनको अब ने को जान कारण वास जरूर मिना गया अंडो ने उनको ले लगिन चे जोगो सुन को लगी दो अब निंता ते निना गोद्रूप रे चे अब ने कबू हरमरंग को मिन लेकना निना को अब प्रक्रिया नेंद्र शामिल लेकने अंडो नेंद्र मीडे के ने मैन लेकाना ना बरसिंग अब मियन नेनरे संस्थागत देख रेख लगे नैन हनको लगे मीना अनो नैन हनको लगे सरकार पाए थे जो नैन मिशन वत्सल्य अंतर्गत रे मियन पोस्टर केयर योजना चलाओ तना नैना रे हनको असूल को तिया अनो बुगिल कते लेल को तिया लगे गे नैन योजना दो मीना अनो नया योजना हनको लगे समय रे परिवार को ललको तैया अनो एसुरिना नेंद्र गोरोजो मेना एनलेकाते निया चिमिनंग दुर्करा अनो 18 बरसे ते पुरे यनरे नेको आकुआ ललको तैया योजना जो ओकना लाभ को नामिया इना को नामिया एंदो मर एला अबु नेन पोस्टर कियार या फालन पोषण देखभाल चिकना तना एनना कोबु चिरगेलिया निया दो अब गोदरे बो इटी के कहते अनो एक अस्थायी व्यवस्था जो कि अब जाता रही हो नैन हनको प्यार को नमे का अनो भुगित बुरीके को का इन लेकिन उड़ू के थे नीना मियन अब जैविक परिवार समेत दो बनो या ना इन लेकते निया सभी ने प्यार को सभी ने नेको बो इमा को अनो जान जितन हनको रही हो नेको अकुआ प्यार एम के थे अब नेको मैंने रासा ही चिकोतिया रासा ते रिके कोतिया अंडो निन्द्रिया आ जो इंगा आपो को भाई किनाए ते निन लिका आपो निन्द्रे योगदान बु एमिया निना दो आपो चिमिन भुगिते बु उड़ो ये इन लिका ते गे निन इंगा आपो को आ जो ना आपो ललरे दो आयो जोर जो मैंने आपो निन्ताए ते 115 वर्ष ते अधिक का होना चाहिए ओकोना मनते आखा जी ची एक 15 वर्ष है ना नेंद्र अंडो यदि नीना मिडोगे में नहीं है इनका न हो अंडो तो नेंद्र उनको असुल को तिया नीना सनंग तना एंड अकिनो कम से कम अकिने 35 वर्ष नीना बारिये ते मियन समिलो तिया ऐसोरिना दुर्कराई मिनंग हो बागन होते इन लेकर ते निया मिडो सुमें पुरुष यानी कि कौन दो बनो मिडो समय कोई नो बनो नीना सभी लेकिन ते मिलो कि ना ते ना बोलिए या अंडो नीना अब पश्चिम सिंहभूम जिले रे निवासी को उकन को ताइन ते ने इनको गे अंडो नीना अब आसपास रे जो उकना मुख्य को जो को नको प्रमाणित ये आय प्रमाण पत्र अंडो पुलिस स्टेशन आए ते नीना को नमो या प्रज्ञा केंद्र से ते ना वेरिफिकेशन या सत्यापित कहते ने रिपोर्ट को इन लिखना को नीना को रिके कहते नीना को बो अग कहते इनको बो रिके दिए को तिसिंगे जानकारी दमर ननमोले रगे चबाओ तना इला अयरपा लॉलिंग आयु मिचे बिना दूरंग

अभी आपने सुना क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाय भाषा केंद्र है।

स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:31 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हमारे युवा दोस्तों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम युवाणी।

0: तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा नहीं बल्कि पूरी पूरी उम्मीद और भरोसा है कि आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे और अपने अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त भी होंगे, है ना। तो आज एक बार फिर से हम आपके साथ इस कार्यक्रम में हाजिर हो गए हैं आपके लिए अनेकों जानकारियां लेकर। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सबसे पहले आपको देते हैं जानकारी हमारे आज की तिथि के बारे में, यानी कि आज 1 जून है श्रोताओं। और आप सभी ये जानते हैं कि आज के दिन का हमारे देश में या फिर हमारे दुनिया में एक विशेष महत्व है। तो ये महत्व क्यों है, आइए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आज है इंटरनेशनल पेरेंट्स डे। हर साल 1 जून को दुनिया भर में इस दिन को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने सन 2012 में की थी और उसके बाद से इस दिन को मनाया जाने लगा। तो दोस्तों पेरेंट्स यानी कि हमारे माता पिता, ऐसी शख्सियत जिसके बिना हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं है। तो आज का ये दिन समर्पित है हमारे माता पिता को। और क्यों समर्पित है, क्योंकि उन्होंने हमें इस दुनिया में लाया। और इसके अलावा यह दिन हमारे माता पिता को उनके जो उन्होंने हमारे लिए समर्पण किए हैं, जो भी अपनी इच्छाओं को मारा है हमारे लिए, जो भी कुछ उन्होंने किया है, उन सभी के लिए उनको धन्यवाद देने का ये एक दिन है और उनको खास महसूस करवाने का कि वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और उनको इसके लिए सम्मानित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के पालन पोषण और उनके जीवन में माता पिता के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करने के लिए हम मनाते हैं। यह वैश्विक स्तर पर परिवारों के महत्व और बच्चों के मानसिक व सामाजिक विकास में माता पिता की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। और इस दिन पर हमें अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए, उन्हें गले लगाना चाहिए और उनके लिए कुछ खास करना चाहिए जिनसे उन्हें कुछ अपने आप में अच्छा महसूस हो सके और वो अपने आप पे गर्व महसूस करें कि हमने ऐसी संतान को जन्म दिया है। यह वैश्विक स्तर पर परिवारों के महत्व और बच्चों के मानसिक व सामाजिक विकास में माता पिता की जिम्मेदारी को रेखांकित करने का दिन है। तो आइए आज हम सभी मिलके अपने माता पिता को करते हैं नमन और उन्हें धन्यवाद देते हैं हमें इस दुनिया में लाने के लिए, हमारा अस्तित्व बनाने के लिए। और हम आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, उन्हीं की वजह से हैं, इन सभी चीज़ के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए। तो चलिए अब ये जानकारी थी इंटरनेशनल पेरेंट्स डे के बारे में, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको हम और भी कुछ ज़रूरी जानकारी देंगे। लेकिन आइए उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कुछ ज़रूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इन जरूरी संदेशों के बाद श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से, आपकी रेडियो सखी संगीता के साथ। आइए अब जानकारियों के दौर में हम आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का दिन आपका है, यानी कि सोमवार है आज दोस्तों। और सोमवार को हम आपके लिए कार्यक्रम युवाणी में बहुत सारी आपके लिए जानकारी लेके आते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि आज का दिन, अब का समय हमारे युवाओं का है, और अपनी ऊर्जा को, और हमारे युवाओं में भरी है बहुत सारी ऊर्जा, बहुत एनर्जी, ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। तो अपनी ऊर्जा को आप सही दिशा में लगाएं, क्योंकि आपकी मेहनत ही कल का इतिहास लिखेगी। गलतियां सबसे होती हैं दोस्तों, तो गलतियों से डरिए मत, वे इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। अगर आप गलत हो जाते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं किसी भी काम में, तो आप डर के चुप मत बैठिए, यानी कि अपनी कोशिशों को आप छोड़ मत दीजिए। उठिए, आगे बढ़िए और दुनिया को दिखाइए अपनी ताकत। और याद रखें, सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफ़र है। आपकी लगन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ नया, और बढ़ते हैं अपने भविष्य के सफ़र में। तो हम आइए इस कार्यक्रम में भी इसी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां हमको दें, आपको देते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा झारखंड राज्य में कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं श्रोताओं। तो हम आज आपको उसी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो आइए बताते हैं हम आपको इसके बारे में। तो दोस्तों, आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपनी कोशिश को सिर्फ सोच तक ही रख पा रहे हैं, तो आगे बढ़िए और पैसों की कमी की चिंता अब आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार योजना सिर्फ आपके लिए है। इन शानदार योजना के तहत आपको अपना काम, खुद का काम, दुकान या उद्योग शुरू करने के लिए सरकार से बेहद कम ब्याज दर पर लोन और भारी मात्रा में सब्सिडी मिल रही है। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहें या फिर सर्विस सेक्टर में, आपके यह योजना आपके सपनों को उड़ान देने में मदद करेगी। तो आइए ऐसी ही कुछ योजनाओं में से हम आपके लिए एक योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं, वो है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की। तो आइए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आप कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं और इसके लिए क्या पात्रता है, ये सब की जानकारी हम आपको इस बारे में दे रहे हैं। तो दोस्तों, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के शहरी और ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए शुरू की गई ये एक महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसके तहत 25 लाख तक का ऋण और भारी सब्सिडी यानी कि अनुदान प्रदान की जाती है, और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके योजना के तहत लोन की राशि 50,000 से लेकर 25 लाख तक की होती है, और सब्सिडी अनुदान इसके ऊपर अगर हम की बात करें तो सरकार द्वारा परियोजना लागत का 40% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान यानी कि सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। अब कैसे लोग इसके लिए पात्र हैं, कैसे आप इसके बारे में इसको ले सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम बताएं। तो पात्रता की अगर हम बात करते हैं, तो आवेदक जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहता है वो झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और आय सीमा की हम बात करें तो परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, और किनको ये योजना मिलेगी या किसको लाभ मिलेगा इस योजना का, तो वह यह योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जाति ST, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग BC और दिव्यांग PWD के वर्ग के युवाओं के लिए खास करके ये बनाई गई है। और ऐसे ही लोग यानी कि SC ST BC और PWD वर्ग के युवाओं के लिए ही ये योजना है। और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जो जरूरी हैं वो है आवेदक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, प्रजाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक के पहले पृष्ठ की छाया प्रति, व्यवसाय प्रोजेक्ट का प्रस्ताव यानी कि आप कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं, उसे आपने कैसे डिज़ाइन किया है कि आप उसको कैसे करेंगे, किस तरह का व्यवसाय आप करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, उसके लिए मार्केटिंग कैसे करेंगे, इस सब की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो योग्यता है इसको लेने के लिए हमने आपको बताया ही कि 18 से 40 वर्ष तक की आयु आपकी होनी चाहिए, यानी कि 18 से न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष की होनी चाहिए। और पढ़ाई की अगर हम बात करें तो कम से कम 8वीं या 10वीं पास होना आपका इस योजना का लाभ लेने के लिए ज़रूरी है। तो देर किस बात की दोस्तों, आज ही अपने नज़दीकी जिला उद्योग केंद्र यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर में जाएँ, सरकार के अधिकारी या फिर आप इसे खुद से भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आप सरकार की आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें, योग्य उम्मीदवार योजना की आधिकारिक वेबसाइट या राज्य के कल्याण विभाग जिला जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन कीजिए और लीजिए इस योजना का लाभ और आगे बढ़िए अपने भविष्य में और अपने जीवन को, अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। तो इस जानकारी के बाद श्रोताओं, आइए हम आपका मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ।

श्रोताओं, हमने आपका मनोरंजन किया फिल्म हम साथ साथ है कि इस गीत के साथ, और इस गीत को आज आपको सुनवाने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही था कि आज हमारा देश मना रहा है अंतर्राष्ट्रीय माता पिता दिवस, तो उनको धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए ही हमने आपको आज का ये गीत सुनवाया। तो आइए अब इसके बाद हम आपको देते हैं कुछ जरूरी संदेश जानकारी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की वो देखभाल नहीं कर पा रहे, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या तो जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इस योजना को पालन पोषण देखरेख योजना के नाम से भी जाना जा रहा है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख की योजना में लाभान्वित किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। तो श्रोताओं, यह गोद लेने की कोई प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक अस्थाई व्यवस्था है जहां पर बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक कि वो अपने जैविक परिवार में न चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो श्रोताओं, आप भी पालक माता पिता बनकर इस नेक कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता जो कि आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि माता और पिता दोनों की उम्र को मिला करके जो योग बनता है वो 115 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे का पालक बनना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और इसके तहत एक और आवश्यक बात है कि जो अकेला पुरुष होगा यदि और वो बच्चे को लेना चाहेगा तो ऐसे पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती है। अगर आप पश्चिम सिंहभूम जिला के निवासी हैं, आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, तो पालक माता पिता शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों तो ऐसे जो लोग होते हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं और किसी बच्चे के पालक माता पिता बन सकते हैं। श्रोताओं, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों के लिए हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दीजिए। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। अधिक जानकारी के हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई, जिसका फ़ोन नंबर है 9955131364 और 9090700489 पर संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चायपासा में आकर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और तो ये जानकारी अब यहीं समाप्त होती है, और इस जानकारी के साथ ही श्रोताओं, हमारे रेडियो की स्टूडियो की घड़ी ने भी ये इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम युवाणी से विदा लेने का वक्त हो चला है। तो अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी संगीता को विदा दे, नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में संध्या के 7 बजने वाले हैं। आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, बेटा ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
9: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का किया शुभारंभ, किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में 132 छात्रों को दी डिग्रियां। तकनीक और मानवीय संवेदनाओं के संतुलन के साथ समाज सेवा की अपील। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा, जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कल्याण विभाग की समीक्षा, राज्य में साइकिल उद्योग स्थापित करने की योजना तैयार करने का दिया निर्देश। और रांची, खूंटी, सिमडेगा समेत कई जिलों में 7 जून तक तेज आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट, वज्रपात की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। एक रिपोर्ट।
10: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से

0: देश भर के शहरों और कस्बों में 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्षों ने लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और नए अवसर भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 1 महीने तक चलेगा। किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया।
2: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो कि जो मुझे मार दे।
1: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज जमशेदपुर के बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर कॉलेज के 132 MBBS छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। अपने संबोधन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई चिकित्सा तकनीकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। राज्यपाल ने छात्रों से तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए मरीजों की बेहतर सेवा करने का आह्वान किया।
3: चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं बल्कि मानव सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। एक चिकित्सक के हाथों में केवल उपचार की क्षमता नहीं होती बल्कि रोगी को आशा, विश्वास और जीवन देने की शक्ति भी होती है। जब कोई पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसे केवल दवा नहीं बल्कि संवेदना और भरोसा भी चाहिए होता है।
1: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को कोडरमा के हजारों छात्र छात्राओं को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से हस्तांतरित कर सर जेसी बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह से संबद्ध किए जाने पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं से एक बार फिर अवगत कराया। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने यह जानकारी दी और विश्वास व्यक्त किया कि इस विषय पर मुख्यमंत्री सकारात्मक पहल करेंगे। साथ ही राज्य में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनहित से जुड़े विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, छात्रावासों की स्थिति और आश्रम स्कूलों के विकास समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में साइकिल उद्योग स्थापित करने की योजना तैयार करने, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने तथा कल्याण विभाग के विद्यालयों में SIR और जनगणना से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने वन अधिकार पट्टा वितरण अभियान में तेजी लाने, हॉस्टलों के निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा करने तथा कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षित युवाओं के रोजगार संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने नर्सिंग स्कूलों में युवकों की भागीदारी बढ़ाने, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोलने का प्रस्ताव तैयार करने और कल्याण विभाग के अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने आज रांची के ओरमांझी क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक की लागत से कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें डीप बोरिंग, स्नानागार और शौचालय, सामुदायिक भवन कार्य शामिल है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और लोगों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ.

0: इरफान अंसारी ने जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में दुलाडी चारेडी आदिवासी टोला सड़क निर्माण योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पूर्व ग्रामीणों से किए गए सड़क निर्माण के वादे को पूरा किया जा रहा है और क्षेत्र के हर गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है। मंत्री ने बताया कि सड़क निर्माण से हजारों ग्रामीणों को आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में लाभ मिलेगा तथा आदिवासी बहुल गांव मुख्य सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेंगे। रिम्स राजपत्रित कर्मचारी संघ के बैनर तले रिम्स के नर्सिंग स्टाफ ने निदेशक कार्यालय का घेराव और विरोध प्रदर्शन किया। बकाया वेतन भुगतान को लेकर विरोध प्रदर्शन में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मी, स्थायी कर्मचारी और पीजी डॉक्टर भी शामिल रहे। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के आश्वासन पर आंदोलन को समाप्त कर दिया गया।
1: हमारे सॉफ्टवेयर में और झारखंड सरकार के ट्रेजरी के सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा मिसमैच, जिस वजह से हम सैलरी नहीं निकाल पा रहे, तो उस पे काम चल रहा है। ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुकी है हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की और हमने भी बातें कर ली हैं। तो अभी हम कोशिश ये करेंगे कि परमानेंट आईडी जो है वो ट्रेजरी ही दे दे, ताकि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म।
0: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, सिमडेगा समेत राज्य के कई जिलों में 7 जून तक तेज आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। रांची जिला वुशु एसोसिएशन और झारखंड वुशु एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में बरसामुंडा स्टेडियम में 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन वुशु प्रशिक्षण शिविर का आज शुभारंभ किया गया। शिविर में रांची जिले के खिलाड़ियों के साथ साथ राज्य के अन्य जिलों के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का किया शुभारंभ। किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में 132 छात्रों को दी डिग्रियां। तकनीक और मानवीय संवेदनाओं के संतुलन के साथ समाज सेवा की अपील। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा। जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कल्याण विभाग की समीक्षा। राज्य में साइकिल उद्योग स्थापित करने की योजना तैयार करने का दिया निर्देश। और रांची, खूंटी, सिमडेगा समेत कई जिलों में 7 जून तक तेज आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट, वज्रपात की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बंधू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार्ड जीत जाते तो
2: पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: दादा, कौन सा प्लांट है?
6: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
7: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
5: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
7: क्यों?
5: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
7: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का।
8: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायपासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:10 हो चुके हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। आज का विषय है गरीब कल्याण और आज आप इस कार्यक्रम की पहली कड़ी सुन रहे हैं। तो आइए इस कार्यक्रम के लिए हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।
9: The JAM scheme, the JAM Trinity, which is a no-leak ecosystem, and the Janadhan Yojana, which was launched in 2014, it's been 16 years almost now, created almost over 50 crore zero balance bank accounts, so on and so forth, which eliminated the middleman, and of course the financial inclusion for the women cannot be overstated. Now, how do you see this JAM Trinity actually working?
10: See, like you said, the priorities of the government were laid down and

0: appointment actually fixed very early in the day. After Prime Minister assumed charge in 2014, we recall that among the first statements that he had made is that his government will be dedicated to the welfare of the poor. So we have since then followed the policy intent closely, and we have now seen that a number of government schemes are basically aimed at three large objectives, wherein also the Jan Dhan Yojana of the government fits in. These three large objectives basically are not only to lift people out of poverty, but then to keep people moving upward. The upward mobility insofar as income generation is concerned is very important, because otherwise what's going to happen, you're going to pull somebody out of poverty, they're going to fall back in. So for that to happen, you needed basically what is called the backbone of the larger pro-welfare landscape. The Jan Dhan Trinity, where we talk about the accounts through the mobile phones, yes, and the Aadhaar identification. Yes. So you have the Jam Trinity. So you have the Jan Dhan account, which you just mentioned. Zero balance accounts were allowed to be opened for a lot of rural poor, urban poor also. I think that number has now crossed 58 crore. And what is important is that 57% of these accounts are in the names of women of the household. So you now have zero bank balance accounts where people have started depositing money. They have started receiving DBT, direct benefit transfer of various government schemes. Also, if there are any pensions, if there are any credits, deposits, everything is coming into that account. Secondly, that you mentioned, in the Jam Trinity, you have the Aadhaar identification. The Aadhaar landscape is now largely comprehensive. A number of people have been covered. And then the mobile. So through mobile, you are pushing the financial inclusion part of this whole Jam Trinity. So you now basically have the backbone of the welfare structure that the government conceives. And through this financial inclusion backbone system, you have a pool of beneficiaries who are able to directly and easily and smoothly benefit from government schemes. See, government was helping the poor earlier also, but we all know that there was a large loophole existing in the system. Money was being sent to some account, it was reaching some other account, there were ghost beneficiaries. Sure. What Jam Trinity has done is it has helped weed out all these ghost beneficiaries. Money is assured to the beneficiary now through Aadhaar and the mobile identification, and that is what is now making a difference.
1: Absolutely. Aditi, you mentioned about the plugging of the leakage, the pilferage, which was happening earlier on before this Jam Trinity came into effect. Yeah, Shubma, one cannot actually ignore the government scheme specially directed at the women folk, especially when we talk of the BPL households and the rural folk. Now, PM Ujjwala Yojana is one such scheme which has really revolutionized, you know, if you can say, you know, the healthcare, the upliftment of the healthcare of the rural women. Now, how do you see this PM Ujjwala Yojana actually, you know, benefiting the rural women?
2: That's a very interesting thing that you've asked. And frankly speaking, when PM Ujjwala, which is basically supply of LPG cylinders to the places which were earlier using only firewood, so rural areas, semi-rural areas, you know, those sort of areas. Now, when we get this phenomena, the first thing that happened is that not only did the cylinders reach, but authorities were pleasantly surprised by what is called the incidental benefit, which is that there was a sharp reduction in bronchial problems of women. So basically, in any village household, the big problem was the kitchen would typically be highly smoke-laden. And from there, a clean fuel was doing a substantial change in the health conditions of the people, of the women. Now, this was studies that was done by independent agencies, and frankly, it was something that wasn't even thought of initially as how significantly it will change the needle in terms of the health benefits. So this is surprisingly useful and a surprisingly refreshing add-on of the PM Ujjwala scheme, because Ujjwala did its primary role, which was that it ensured that a steady supply of fuel reached the households. This immediately not only did, the health benefits, as I said, came along and caught everybody pleasantly surprised. The basic thing that it was supposed to do was to cut down the time that women spent collecting firewood, getting cow dung, and so on and so forth. In fact, the third benefit that had happened was it released a lot of manure for use in what is called the biofuel changes, which has actually now become a very significant add-on. So there's been a lot of what we should say cascading impact of the Ujjwala benefit. As you would have noticed, that what has happened is that this has also led to a very strong financial security in those households. So together, it has been a very impressive package of reforms that have been delivered, impressive package of benefits that have been delivered. Yes,
1: absolutely, Shubham. Aditi, Shubham abhi baat kar rahe the, kis tarah se ye BPL household ko khas karke Ujjwala yojana ne benefit pahunchaya hai rural women folk ko khas karke. उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से स्मोक लेडन हमारा किचन हुआ करता था और सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर हम बात करें वो है जल जीवन मिशन का. टैप वाटर ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे खास करके भारत देश में सीजनल रेन्स एंड ऑल यू नो एंड वाटर बोर्न डिजीजेज, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता था. जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम मतलब ये लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहाँ पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई. कैसे देखते हैं आप, खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें तो?
0: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, जिसके तहत सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को. क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड्स ऐसे थे रूरल एरियाज में, ये रूरल हाउस होल्ड्स को जोड़ने की स्कीम है ज्यादातर, और इतने सारे हाउस होल्ड्स थे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे, पढ़ते थे. आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफर तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है. जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी. जो डेजर्ट एरियाज हैं खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहाँ पानी की समस्या इतने साल बाद भी आज़ादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई. और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इंप्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बूंद की तरह आया है. क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था, और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था वो अब और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है. ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है.
1: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ें. शुभ में सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी. सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है. शुभ में क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
1: जी,
2: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट. आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डेफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मानसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए. इसमें जो भी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के आप डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं. अभी आप मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया. और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े।

0: should have the financial literacy to be able to carry that sort of a enterprise. Now, typically, somebody who's poor and who's doing an enterprise because she or he has been forced to do it is different from somebody who's doing a financial enterprise because he wants or she wants to do it. There's a difference. That difference, because of the fact that an ecosystem of support, partially again through the JAM Trinity, has come in where people are confident that they can run a financial enterprise seamlessly. You know, because otherwise, what has been happening is that there are several types of interventions to create entrepreneurship which had been tried, which had not worked, primarily because people lack the confidence that whether the back end of an enterprise will be something that they can sustain. It's actually a very big thing, because unlike a salaried person who gets some money at the end of the month, does the work and is all assured and comfortable that you'll get a salary, and so that's about it. Here, a person is daily selling his ware, services, manufactured products, whatever it is, and earning income and keeping a track of it, and then also being able to sustain it and being able to repay loans. And then, because the Mudra loan, as you can see, is of three stages, Shishu, then Kishore, and then Tarun. So there are three stages in which, so you graduate from one to another. To be able to do that sort of a thing, you need a considerable amount of financial, what I should say, architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujwala or Sakshat Mission or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. So it'll start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment. And that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number percentage of them because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
1: Right, Shubhma. Diti, abhi Shubhma ne self-employment ki baat ki, stand-up India scheme bhi ek aisi scheme hai, jiske tahat 15,000 प्लस करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं. इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं. और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है. कैसे देखते हैं आप इसे?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान. जून 2020 में ये शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम, और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है, और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, 3 लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है। और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं। प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम। तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है। 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के।
1: राइट आदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक लखपति दीदी अभियान। ये लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी, और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है, कुछ बताएं इसके बारे में।
2: जी, एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की। और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है।
1: जी,
2: जो 6,000 की रकम तय की गई है, ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा। इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये 4 स्तंभ हैं। जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं लखपति दीदी योजना, उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे द्रोन दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं द्रोन दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीज़ें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज़ की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज़ हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहाँ मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है, और चाइना का 35.7 है, और US का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट, एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी, जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी, और अब घट के 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी, अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी। अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
2: थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार

0: अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। विषय था गरीब कल्याण और आज आपने इस कार्यक्रम की पहली कड़ी को सुना। FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है।

करते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की शुरुआत और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला फिल्म संगीत फिल्म अभिमान से। आवाजें हैं गायक कलाकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन है एसडी वर्मन की।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म पत्थर के सनम से। आवाज़ थी गायक कलाकार मुकेश की। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है।

स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं आप सभी श्रोताओं के फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार जोहार। श्रोताओं, आज मेरे हाथ में है आपके द्वारा लिखे गए कई खत। हमें खुशी है श्रोताओं कि आप हमें इतनी संख्या में खत लिख रहे हैं और आप हमें सुनते हैं। आप ऐसे ही हमें खत लिखते रहें, ये हमारा सौभाग्य है और हम कोशिश करेंगे कि आपके पसंद के गीत इस कार्यक्रम में हम अपने जरिए आप तक पहुंचा सके। तो आइए अब जाता वक्त आपका ना लेते हुए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत जो कि हमें मिला है छत्रपति संभाजी नगर से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं राजेश सापले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। न्यू कॉलोनी टुंगरी, तसर फॉर्म रोड, चायबासा से रश्मिता राउत, मधुस्मिता राउत, प्रकाश जायसवाल, रीना जायसवाल और वैष्णवी कुमारी ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। सद्भावना रेडियो श्रोता संघ पीएम सिटी बनारस यूपी से अपनी फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता हैं आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक, मोहिनी, मोहित सिंह, हर्षित और पुलकित। ग्राम फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और हांसी शहर के राजू मिकलानी, बबीता मिकलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। ग्राम अमलेश्वर के डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सुरेश ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। बड़ा बाम्बो सुपाईसाई से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश ताती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला, श्यामदेव नायक और सीमा। ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बसंती, रमेश बेसरा, अन्नू, पूजा, बनमाली और सिद्ध कुमारी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। चायबासा से आर के सिन्हा, दीपक ठाकुर, प्रकाश कुमार गुप्ता, सुशील मुंद्रा, रमेश दत्तानी, राजाराम गुप्ता, त्रिशानु रॉय, कैशर परवेज, निरंजन प्रसाद साव और सुनील प्रजापति ने भी हमें अपनी फरमाइश खत के माध्यम से भेजी है। हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है गायक कलाकार कुमार शानू के स्वर में गाया हुआ

गीत, माफ़ कीजिएगा, गायक कलाकार सोनू निगम के स्वर में गाया हुआ ये गीत फिल्म वास्तव से बोल समीर के हैं, धुन है जतिन ललित की। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर के प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने भी अपनी फरमाई समय इसी गीत के लिए भेजी। शेरपुर कलाम गाजीपुर के अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। दादरी गेट भिवानी के कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। चरुण वरुण महाराष्ट्र के बाबा साहेब वाड़ोदेव मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे और कार्तिक युवराज की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। ग्राम हरतांग टोडांग टोला महाली साई से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत। और खत लिखने वाले श्रोता हैं बिरबल महली, सरस्वती महली, फुलवंती महली, शकुंता महली, सुमानती महली और यशोदा महली। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी के मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, सादिक साजी और साजिद की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश के आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाह विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी ने। आमलाटोला चायबासा से गौरव प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत फिल्म वास्तव से। आवाज़ गायक कलाकार सोनू निगम की है, बोल समीर के हैं, धुन है जतिन ललित की। तो आनंद लीजिए श्रोताओं आपके पसंद के इस गीत का।

वास्तव इस फिल्म से ये गीत आपने सुना। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है गांव केता सरायकेला से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता है राधा कृष्णा गोप, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक, आशीष, सुमित, अनामिका, सुनीता गोप, गीता गोप, रीता गोप, सुलेखा गोप, आराध्या गोप, माहिर गोप, खुशी गोप और राहुल गोप ने। ग्राम बादुड़ी से नारायण को दादा, हेमा को दादा, कैलाश को दादा, सुषमा, पप्पू, प्रीति को दादा, विक्की और पुष्पा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। पुरानी टोली जसपुर नगर छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं मालती नागदेव, कुमारी सोनाली नागदेव, मयंक नागदेव, अनमेश नागदेव और अंसल नागदेव। आरती टाउन गोदनी नागपुर महाराष्ट्र से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं अल्जियार अब्राहम और जैनी अब्राहम, एलन अब्राहम, ग्लोरी अब्राहम, एलेक्स अब्राहम, जोसेफ रुफट, अविनाश क्षेत्रपाल, सिद्धार्थ गुंडा ने, हीरामन सेंडे और उनके साथी। रिंगनी छत्तीसगढ़ के दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चीर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। महुल्डिया सोनवा झारखंड से हमें खत लिखा है नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, वंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गितेश, अनु, तनु, डिस्को महतो और भाई नंदू महतो ने। मेन रोड सोनवा के गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पाणी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पाणी प्रधान और नीक पाणी प्रधान की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ के उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर और योगिता दिवाकर ने भी हमें खत लिखा है। बड़ा निमड़ी चायबासा के तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार और सुमित कुमार की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से हमें खत लिखा है चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और वान्या सिंगरौल ने। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म जीवन मृत्यु से ये गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। और जीवन मृत्यु के इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चायबासा से भोला राम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल कुमार मधुर, प्रशांत कुमार मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठ मधुर और सनी मधुर। ग्राम बठेना पाटन के बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली और शिवम की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। चटदा सारा गांव से सुजान, सुहद्रा वर्मा, आयुषी, निर्मला और कृष वर्मा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। भिलाई छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। रेलवे रोड गंजू डबरा के मोहम्मद कलीम जख्मी, भवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख और अब्दुल सत्तार अंसारी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। गांव चौहल्दा बागपत के संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल की फरमाइश भी इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। बड़विल ओडिशा से इसी गीत को सुनना चाहा सुरजीत भाटिया, प्रीतपाल कौर और जीत प्रीत ने। मछली गोदाम कैदीमोड़ा रायगढ़ से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रितु सिंह और ऋषभ सिंह। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म जीवन मृत्यु से।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: స్వయం ఇది కట్టుబడే భారతీయ సేనా.
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ.
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है. नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है. इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है.
3: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मेरे बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नेहर में ना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तो बन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना जंगल गया है तो आउका कहाँ बना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए
6: तुम लोग बुरंग सिंह तमसा है अनिता तमसा भरूपा ऐसा करना ऐसे दुकुरा में ना आया या पाम ना इरिया तपाम ना इरिया वाह बेटा निका
7: अन्य न तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने मैं उड़ी उड़ी ने बागिया तो कि मैं दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो मैं लड़ाई चलाओ तमा दूर रहने को यहाँ तो जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेकर ना लेंगे सी जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम ते ना मिले आप ही लेकर ना.
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी. साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है. आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं. हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें. इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं.
9: इन जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम रजनीगंधा में. ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से. आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत जो कि हमें लिखा है ग्राम पैजोनिया तहसील को जिला जालौन उत्तर प्रदेश से. और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं सत्येंद्र चंदसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक और आराध्या चंदसौलिया, तिवर्ता डबरीपाड़ा छत्तीसगढ़ के महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम, जागेंद्र कुमार मरकाम, गजेंद्र प्रताप मरकाम, सुरेंद्र कुमार मरकाम, मोहन सिंह मरकाम और मनमोहन सिंह मरकाम ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है. कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है चंदा रेडियो श्रोता संघ चंदा चौक अंधरा ठाड़ी जिला मधुबनी बिहार से. और खत लिखने वाले श्रोता हैं सोभिकांत झा सज्जन, हेमलता सज्जन, मोहित सज्जन, लकी सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना सज्जन, विवेक सज्जन और SK सज्जन, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल के गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनवीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और GS रामगढ़िया ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है. ग्राम हारूडी चांडल से

में खत लिखने वाले श्रोता हैं तुलसीदास महतो, कल्पना मनोरमा, दीनबंधु महतो और मनमोहनी महतो। ग्राम खेड़ियाघर प्रखंड मंझारी के बसंत पेंकुरा, सुलोचना पेंकुरा, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झिम्पी कुमारी, जयमनी और जयंती की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं हुसैन अकरम हुसैन, इशरत अकरम, रुबीना वसीम, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अभिहा नाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख और कोकिलवाड़ा उड़ाई मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैसल शेख, नुसरत जहां नाज और कांति निकेतन राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश से फिल्म दाग द फायर का ये गीत जिसे आवाज़ें दी हैं गायक कलाकार उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों ने। और इस गीत के लिए हमें एक और फरमाइश मिली है एकता कॉलोनी रोहतक से और खत लिखने वाले श्रोता हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। अनारकली बाजार जगराव के सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गाव्या और जयपाल यादव की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ के देवशंकर तामोरिया, अजय, रोशनी, पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामोरिया की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। चितलवाड़ी अकोला से इसी गीत को सुनना चाहा है अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले, अधीरा इंगले और समस्त इंगले परिवार ने। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर के प्रमिला श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार, अशोक श्याम कुमार और दीपक कुमार श्याम कुमार की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। लक्षणपुर से जीवन लाल रजक, सरोजनी रजक, रामजी साहू, बाबा कुटी, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और भटगांव बलौदा बाजार से रामदुलार साहू और नीलिमा साहू ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है मैंक रेडी श्रोता संघ नवागढ़ कटई से और खत लिखने वाले श्रोता है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म वास्तव से। आनंद लीजिए श्रोताओं आपके पसंद के इस गीत का।

फिल्म वास्तव के इस गीत के बाद आइए लेते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है तुरी टोला चायबासा से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, संगीता देवी, खुशी कुमारी, अर्पिता कुमारी, सुमित ठाकुर, लाडो और भोला रजक ने। लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, रमा पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, नीलम पुरी और आरएस पुरी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कुचाई बिदरी गांव के पी सोए, सरिता, दुर्गामती, रेशमी, राजकुमारी, विशाल, मुन्ना सोए और सनी सोए ने भी हमें खत लिखा है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है ग्राम सूराबेड़ा से बासिंग सरदार, धनी सरदार, कमल सिंह सरदार, सुकमती सरदार, रमेश, अंशु और बिरू सरदार ने। ग्राम सौगा मंगरलोड धमतरी छत्तीसगढ़ के फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। प्रयागराज के पीयूष प्रताप, स्नेहा सिंह, फट्टन सिंह और शिवनाथ सिंह ने भी अपनी फरमाइश हमें खत के माध्यम से भेजी है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा, सालिया, सोएब खान, मुस्तफा खान, रऊफ भाई और साहिद भाई। गांधीबाग अकोला के रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। इचल करंजी महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत। और श्रोता हैं वसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, आदित्य हजारे और मितांशु हजारे। बोर्डसरा नैला के प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। मेरी टोला चायबासा के विशाल कच्छप और दुलारी बिरवली की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। नांगलोई दिल्ली से खत लिखने वाले श्रोता हैं मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्ढा। कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश के यूनुस खत्री, सफ़ी खत्री, इद्रेश खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, कासिफ आसिम और इरफान मीना ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। जामठी बरोड अमरावती महाराष्ट्र से हमें खत लिखा है मुकेश दिनकर कासलेकर और विमल विशाखा कासलेकर ने। लालमाता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बागड़ी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म जख्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है गायक कलाकार अलका याग्निक।

और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं कुछ आई तोड़ंग दी दो से मुकेश महतो, विजय महतो, दिलीप महतो, सूरजमणि महतो, सुमन महतो और रविंद्र महतो, गांधी चौक रोपड़ पंजाब के हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जितेक बिरक और मीका बिरक की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। मोपका भाटापाड़ा से खत लिखा है भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित और सुमित्रा साहू ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप और अनिल शर्मा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कालका से खत लिखा है सुखचंद बजाज और करनाल से जग्गी दुआ ने। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। तालुका बुरहानपुर मोहद मध्य प्रदेश के भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परु मुबारक पारेकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारेकर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र के अशरत तड़वी, आरिश अरसलान और यूनिस तड़वी ने भी हमें खत लिखा है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत में लिखा है सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से मुशरफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमिन तड़वी, तैमूर तड़वी और तड़वी परिवार के सभी लोगों ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म जख्म से।

श्रोताओं, यदि आप भी अपनी पसंद का कोई गीत हमारे जरिए इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं तो हमें खत अवश्य लिखें। खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम रजनीगंधा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईबासा। चाईबासा का पिन कोड नंबर है 833201। खत में आप अपने पसंद के गीत के साथ ही साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य ही हमें साफ सुंदर अक्षरों में लिख भेजिए। और एक बार श्रोताओं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये लिखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी संगीता को विदा दें। नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।

0: 14 अभी आप सुन रहे थे गीत मालिका के अंतर्गत ये खूबसूरत से गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की, एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू, भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल, और राजस्थान गुजरात पश्चिमी मध्य प्रदेश ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर

0: पुष्टि की है ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: Of our shared future.
1: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल

0: आर एन रवि ने कोलकाता के लोक भवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल

0: बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Lian hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Mi Aung Lian, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defense, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
3: Both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health.

0: रोज पहले एक्ट ईस्ट और महासागर जैसी पॉलिसियों में म्यांमार अहम शराकत दार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि भारत और म्यांमार के सकाफती, तहजीबी और रूहानी ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। भारत से म्यांमार के गहरे रिश्ते की निशानदही करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और म्यांमार के दरमियान मुश्तरक सरहद होने की वजह से म्यांमार जुनूब मशरकी एशिया में रसाई का जरिया भी है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान जामे इक्तिसादी शराकत दारी मुआहिदा CEPA जिस पर 6 महीने कबल दस्तखत किए गए थे आज से नाफिजुल अमल हो गया है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि CEPA सिर्फ कोई तजारती माहिदा नहीं है बल्कि ये तहजीबी रिवायतों पर एतमाद का एक बयानिया है। जनाब गोयल ने कहा कि ये जामे माहिदा ओमान के साथ भारत के ताल्लुकात को नई रफ्तार अता करेगा। मरकजी वजीर ने मुतल्ला किया कि पहले ही दिन भारत को ओमान के टैरिफ खतूत के 98% तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल हो जाएगी और ये ओमान के लिए भारत की 99% बरामदात का अहाता करते हैं। वजीर मौसूफ ने इत्तला दी कि मुख्तलिफ साजो सामान पर मुश्तमिल कई खेप मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से आज पानी के जहाज से रवाना हो रही हैं जो कि इस माहदे पर अमल आवरी की अलामत है। CEPA के तहत कई अहम हसूलियाबियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि USFDA यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी या UKMHRA से मंजूर शुदा भारत की जेनरिक दवाओं को अब 90 दिन के अंदर ओमान में मार्केट ऑथोराइजेशन मिल जाएगी। जनाब गोयल ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ओमान माहिदा भारत के 9 आजाद तिजारती माहिदों का हिस्सा है जो 38 ममालिक का अहाता करता है और जिसे पिछले 3.5 साल में कतई शक्ल दी गई है। हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल के खातिरखा स्टॉक की दस्तियाबी की बात को फिर दोहराया है। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी खुर्दा आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल की हसब मामूल फराहमी बरकरार रखने के लिए सभी तेल मार्केटिंग कंपनियां सरगर्म तरीके से पेट्रोल और डीजल के जखीरे को पूरा कर रही हैं। LPG सप्लाई पर मोहतरमा शर्मा ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान 1,21,00,000 से ज्यादा बुकिंग हुई हैं।
1: डोमेस्टिक LPG घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: मुल्क भर में होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबारी इदारों के इस्तेमाल में आने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है। अलबत्ता घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस की कीमत में कोई कमी नहीं की गई है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 42 रुपये का इजाफा हुआ है और अब ये सिलेंडर 3,113.50 रुपये का हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में पिछले 12 साल के दौरान भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नज़रिए के तहत काबिल-ए-ज़िक्र अक्सर तब्दीली के दौर से गुजरा है। इस अरसे में मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 साल के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज किसानों की बहबूद के तहत हुकूमत के इकदामात पर रोशनी डाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 12 साल के दौरान किसानों की फलाह बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफे के लिए कई इकदामात किए हैं। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला PM किसान स्कीम का आगाज है जो कि मुल्क में फलाह बहबूद का सबसे बड़ा कदम है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में फराहम किए जाते हैं। इसके तहत तकरीबन 9.5 करोड़ किसान कुटुंबों को 4,28,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम मुंतकिल की गई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: मुख्तलिफ जराये के जरिए किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए PM मत्स्य संपदा योजना और मवेशी परवरी के कौमी मिशन जैसी स्कीमों का आगाज किया गया। पीएम कृषि सिंचाई योजना और सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जैसी कोशिशों ने सिंचाई को मुस्तहकम किया और मिट्टी की पैदावारियत में इजाफा किया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदा ने स्कीम की तारीफ करते हुए इसे किसानों के लिए फायदा मंद बताया क्योंकि ये उनके गुजर बसर में मदद कर रही है।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो एज के हिसाब से
2: फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है क्योंकि हुकूमत ने पैदावारी लागत का 1.5 गुना MSP मुकर्रर की है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए 154 मिलियन टन से ज्यादा चावल की रिकॉर्ड पैदावार के साथ चावल उगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आज उस अर्जदाश्त की समाअत से इनकार कर दिया जिसमें NEET UG 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान को मौजूदा कागज कलम फॉर्मेट की बजाय कंप्यूटर पर मबनी जांच के तर्ज पर मुनाकिद करने की दरख्वास्त की गई थी। जस्टिस PC नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की एक बेंच ने कहा कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को कंप्यूटर पर मबनी जांच CBT मोड में मुनाकिद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इम्तिहान की मनसूखी के बाद पहले ही मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना कर रही है। अलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है कि तलाक के सिलसिले में डिक्रीज जारी करना लोक अदालतों और जिला लीगल अथॉरिटीज के दायरे इख्तियार में नहीं आता। हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि शादी को मनसूख करने का इख्तियार पूरी तरह से फैमिली कोर्ट्स के पास है। एक खातून की जानिब से उन्नाव की जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA के साल 2018 के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्त की समाअत के दौरान अलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये बात कही। अर्जीगुजार का इल्जाम था कि उसके शौहर ने सेटलमेंट रिकॉर्ड को DLSA के सामने तलाक डिक्री के तौर पर पेश किया और इसे दोबारा शादी करने की बुनियाद बनाया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज इलाकाई पार्टनरों के साथ ताउन को फरोग देने की अहमियत की तौसीक की है ताकि एक आजाद, खुले, पुरमन, मुस्तहकम और खुशहाल भारत बहरुल काहल को बरकरार रखने में मदद मिल सके। नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वुजराए दिफा मुजाकिरात के दौरान दोनों मुल्कों ने नेविगेशन और ओवर फ्लाइट की आज़ादी और खित्ते में बिला रुकावट तिजारत के लिए अपनी मजबूत हिमायत और बैनुल अक्वामी कानून के मुताबिक समंदर के दीगर कानूनी इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस ने की। एक बयान में वजारत दिफा ने बताया कि दोनों मुल्कों ने समंदरी सरहद की सिक्योरिटी के बाहमी ताउन में पेशरफ्त और समंदरी सरहद की सिक्योरिटी इश्तराक के मुश्तरक लाहे अमल को कतई शक्ल देने के मामलों पर तबादला ख्याल किया। वजरा ने ऐलान किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दिफाई सनती शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अगले कदम के तौर पर दिफाई आर्टिकल और दिफाई सर्विसेज की शिकों के मुतालिक एक मफाहमत नामे की तैयारी शुरू करेंगे। दोनों वजीर सेंसर टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी के नए शोबों में मुस्तकबिल की दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी की तहकीक में ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। मगरबी बंगाल काबीना में 35 नए वजीरों की शमूलियत के साथ आज तौसी की गई। इस सिलसिले में कोलकाता में लोकभवन में आज हलफबरदारी की तकरीब मुनाकिद हुई। गवर्नर RN रवि ने वजरा की कौंसिल में शामिल होने वाले नए अराकीन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी समेत दिगर सियासी लीडरों के साथ इस तकरीब में मौजूद थे। आज काबिनी वजरा के तौर पर हलफ लेने वाली शख्सियात में स्वप्नदास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तपस रॉय, शंकर घोष और दीगर शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने दो कानून साजों संदीपान साहा और ऋतव्रता बनर्जी को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों, अहम मीटिंगों से गैर हाजिर रहने और पार्टी क्यादत के मुतालिक नुकताचीनी करने वाले अवामी बयान देने के सिलसिले में पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। साल 2026 के मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में TMC की शिकस्त के बाद अंदरूनी खलफशार के दौरान ये फैसला सामने आया है। मलेशिया बच्चों के जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उम्र पर मबनी पाबंदियां आयद करने वाला नया मुल्क बन गया है। आज से नाफिज होने वाले नए जाब्तों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की इजाजत नहीं होगी और प्लेटफॉर्म्स को उम्र की तस्दीक से मुतालिक निजाम और बच्चों की तहफ्फुज की खसूसियात पर अमल करना होगा। इन इकदामात का मकसद बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले मशमूलात, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन डिजाइन की लत लग जाने से महफूज रखना है। वो कंपनियां जो इस जाब्ते पर अमलावरी नहीं करेंगी उन्हें 1 करोड़

0: फ्रिगेट तक के जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया ने सोशल मीडिया तक बच्चों की रसाई पर पाबंदियों को मुतारिफ कराया है, जबकि ब्राजील ने वालिदैन की सख्त तरीन निगहदाश्त और उम्र की तस्दीक से मुतालिक इकदामात पर अमल शुरू कर दिया है। भारत की सनअती पैदावार में अप्रैल 2025 के मुकाबले अप्रैल 2026 में 4.9% की तरक्की हुई है। ये तरक्की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उम्दा कारकर्दगी की वजह से हुई। आदाद शुमार और प्रोग्राम पर अमल आवरी की वजारत ने बताया कि यह आदाद शुमार सनअती पैदावार के नजरसानी शुदा इशारे IIP सीरीज पर मबनी है, जिसका बुनियादी साल 2022-23 है। इसमें कहा गया है कि इस माह के दौरान 6.2% तरक्की रिकॉर्ड की गई। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहली आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज आंधी की सूरत हाल के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने वस्ती कर्नाटक माहे शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सिक्किम में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग ने नई दिल्ली में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जाम इक्तसादी शराकत दारी के माहदे पर अमलावरी शुरू हो गई है। ओमान की टेरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदकारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनअती शराकतदारी को फरोग देंगे। मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। और राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहली आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी,
1: नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी सुनते रहे हैं, लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताएं।
2: रूपाली जी, जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है। और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है, मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको भी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए तरबूज लीची आम इनका सेवन करना है और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल्ड रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस, आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी
3: नमस्कार। जी
0: नमस्कार,
3: मैं श्रीकांत डॉक्टर बोल रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र से। मेरे दो सवाल है। जो बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी लगती है, तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वालों ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खास कर ना हाई बीपी वालों ने?
2: हाँ जी, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उन को हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज है, COPD, एस्थमा, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से, गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स है वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है।
0: डॉक्टर पटनायक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है।
4: देखिए, ये हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में, जो ज्यादातर कि अप्रैल में, जून, थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं, उससे भी थोड़ा ज्यादा होता है, कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे। अगर उस 6.4 से भी ज्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसे कि नॉर्मल से अगर इतना डायस्ट है तो करते हैं। और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
0: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा।
4: हाँ, कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल जो 37 डिग्री से ज्यादा होना वो कोस्टल एरिया है।
0: और प्लेन्स के लिए?
4: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज्यादा होना।
0: एक और श्रोता है हमारे साथ, राजू लवानिया, आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी।
5: जी, मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, दीदी आपको भी
0: नमस्कार।
4: नमस्कार
5: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
2: जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है। उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है। आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें, पंखा करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज्यादा आपका हीट लॉस होता है, राधा दर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे। उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना, तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
0: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
2: देखिए, लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं। माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियां बोलते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज कर सकते हैं, और पानी आपको अच्छे से पीना, और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं और हल्के कपड़े ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना, ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं, उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS, आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
0: गंभीर लक्षण क्या होते हैं?
2: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सिवियर वैरायटी है, जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है, वो 40 डिग्री से ज्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपको कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है, तो ये आप सबसे सिवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का, उसमें गिना
0: तो
2: जाता।
0: अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत
2: बिल्कुल
0: सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।
2: उसमें आप फटाफट आप उनको ठंडी जगह, एक तो हल्के कपड़े, ढीले कपड़े और गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्सर्शनल। तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है। जो एक्सर्शनल होता है उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है। बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्सर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है।
0: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महेंद्र जी।
6: जी कनक जी नमस्कार।
0: नमस्ते।
6: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
2: धन्यवाद
6: जी। मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना पानी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
2: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है, कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है, लगभग एटलीस्ट कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसका जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 से लीटर तो 2-3 लीटर आपको पीना ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहाँ कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
0: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
2: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें, और पैक्ड इसलिए जूसेस जो है वो अवॉइड करें। नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी
0: जो हमारे पुराने लस्सी, छाछ, बेल का शरबत, ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती। नींबू पानी
2: बिल्कुल।
0: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है?
4: देखिए दादा, क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं, दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं, ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है, जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं। तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर, वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट कर दे। तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहें।
0: और वो भी खतरनाक होता
4: है। वो भी खतरनाक होता है।
0: धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से। जी धर्मवीर जी।
7: हेलो नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ
0: जी।
7: हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है, मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी भट्टी से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरते हैं, जाना भी जरूरी होता है। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को सिकंजी और ओआर का घोल लेना ठीक है कि नहीं। और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है। अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी ले कॉफी पी ले तो बैलेंस बना रहता है, कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं, कृपा करके।
2: हाँ जी, देखिए कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीजें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीज़ें कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीज़ें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। इसका मतलब कोल्ड ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपकी शरीर को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज़ के मरीज़ को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है। नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए, छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं।
0: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
8: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ अमित उपाध्याय। मैं ये मेरा ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देख रहे हैं तुलना करें और पिछले साल के हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि पहले टेम्परेचर हाई, अभी मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है। तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी, वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक, उनका भी बेहोशी कुछ वैसे हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खूब पानी पीना, जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके? जी
2: देखिए, जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज़ हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है, क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं, खास तौर से वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें। और जो नॉर्मल व्यक्ति है तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का, तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
0: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग है, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
2: किसी भी क्रॉनिक डिजीज का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड है। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं।
0: तो प्रेग्नेंट लेडीज की जो आपने बात की उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
2: देखिए जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज्ड है तो आपको पेरिफेरल वेसोडायलेटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके। उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका बाकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है, तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें, और फ्लूइड फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें।
0: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता।
9: हाँ जी
0: जी,
9: हाँ कनक जी, नमस्ते।
0: नमस्ते।
9: हाँ दीदी को भी नमस्ते सर। नमस्ते।
2: नमस्ते।
9: हाँ विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शिवर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी जी।
9: हाँ मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू है
0: जी,
9: इसका हमारे पर कोई शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
0: पंखे का असर तो नहीं, गलत नहीं होगा।
2: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है। तब आप एसी चला के, एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एसी का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है
0: जी।
2: ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल, और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा। और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह एसी चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
0: घर का तापमान, थोड़ा
2: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा।
0: हाँ जी, और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि आईएमडी की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
4: देखिए आईएमडी जो,
0: ये मयंक शेखर जी, आपको नाम बता दो, मयंक शेखर मिश्रा हैं, ये वाराणसी से इन्होंने पूछा है।
4: हाँ, वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ भी बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है। तो देखिए जो हम जो आईएमडी जो देता है सूचना, जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत सारे मैकेनिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहला तो एक है कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते अपडेट, मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दो देन दूसरा हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पुरका जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है, तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहे हैं, आपको ऐप से मिलेगा, व्हाट्सअप में मिलेगा, देन सोशल मीडिया फेसबुक आईएमडी का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें वह मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है, और हमारा जो रीजनल सेंटर वगैरह, जैसे कि वाराणसी से उन्होंने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है वहाँ से जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन, उनका वेबसाइट अलग होता है, उनका जो डाटाबेस है जहाँ जहाँ मैसेज आता है उनका सारा सब उन्होंने

0: है, तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेरित करते हैं।
1: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में।
0: देखिए, ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:30 के आसपास, 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है, और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का जमीन भी गर्म हो जाता है वहाँ से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है। तो ये दोनों का जब ये होता है तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे मच्छर डे नहीं आता है, दो दो दो 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है। तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती के नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक तो
1: चार
0: आपका
1: बजे
0: अवॉइड करना,
1: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से।
2: नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
2: जी, मैं रवि जवालिया जगमीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ, और सभी सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
2: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरजेशन मशीन से गत्ता कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता ही है सभी को। तो मैं अपने माध्यम से वैसे तो मुझे पता है, मैं श्रोताओं को भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
3: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा, और लिक्विड चीजें लेते हैं।
1: ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रही हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
3: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच बीच में आप जा सकते हैं वहाँ। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
3: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज्यादा लू लगने का रिस्क होता है। और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इंटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले। और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
1: जैसे बहुत छोटा बच्चा,
3: बिल्कुल
1: बहुत, का
3: बिल्कुल,
1: बच्चा
3: बिल्कुल,
1: है, बिल्कुल
3: सुस्तीपन, दूध नहीं पीना अगर बच्चा इतना छोटा, बिल्कुल अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना तो इमिडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है। और बच्चों को भी ढीले कपड़े, ये
1: कपड़े
3: बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
1: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, और कितना घातक है? और दूसरा सवाल मेरा ये कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है, तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा? ये मेरे दोनों सवाल है।
1: जब हिल स्टेशन पे गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स पे?
0: देखिए, जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं, तो बट आजकल क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है, तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला पहला इतना गर्मी नहीं होता था, आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए। लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है

0: एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या होता है, एक जो जो भी राज्य में जहाँ हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है, तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया। तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है, ये बहुत सारे म्यूनसिपल लोग जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, IMD के जो वार्निंग अर्ली वार्निंग देते हैं, और ये बाकी जो जो जो एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी, ये सारे जो है एक तरीके से रहता है। तो पहला उनको क्या होता है, एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा, वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया। तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज़्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
1: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: मीडियम वेव 546.4।

0: आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को जो कि प्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:01 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम महफिल सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। आइए करते हैं आज के कार्यक्रम महफिल की शुरुआत और सुनवाते हैं कार्यक्रम की ये पहली गज़ल फनकार मेहती हसन और उस्ताद सुल्तान खां के स्वरों में।
1: हम सब आर्टिस्टों की हौसला अफजाई है कि इन्होंने हमारे प्रस्तार हमारे सुनने वालों तक एक सबब बनाया है क्लासिकल को रूशनास कराने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर वही मेरी बात रिपीट कर रहा हूँ मैं कि हमारी मौसीकी में ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी ना होती तो कहाँ गए वो आर्टिस्ट जो तूफ़ान की तरह आए थे और आंधी की तरह चले गए। लेकिन आज भी खासा गुलाम अली खान मरहूम अल्लाह बख्शे बड़े गुलाम अली खान अमीर खान और सब बड़े बड़े बुजुर्ग ये राग रंग वैसा ही का वैसा है। मालकौंस आज भी जब बुजुर्ग शुरू होते हैं तो लगता है कि अभी पैदा हुआ है, बोरियत नहीं होती उसमें क्योंकि उसमें ज़िंदगी है खुद। तो ये जय भाई के आइडिया को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि सिस्टम बहुत अच्छा रखा है। तमाम अच्छे फनकारों को उन्होंने आज पेश किया और ख़ास तौर पे हमारा संगीत। शुक्रिया।

मियां की मल्हार है इसका गंधार, आंदोलन भी है और यूं कह लीजिए कि अति कोमल तंतीवर के दरमियान में है, न कोमल है न तीवर है, जो इस बाजे में नहीं है। इसमें हारमोनियम में, पियानो में, इनमें नहीं है वो सुर।

बस तो ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा एक बस तो ही नहीं मुझसे खफा

फनकार सुखविंदर सिंह के स्वर में ये गज़ल आपने सुनी। आइए अब कार्यक्रम की अगली गज़ल हम आपको सुनवाते हैं फनकार मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह के युगल स्वरों में।

फनकार भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के युगल स्वरों में गाई हुई इस गजल के साथ ही हमारा आज का ये गजलों का कार्यक्रम महफिल अब यहीं समाप्त होता है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिल। ये आकाशवाणी का चायबाजा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी रात्रि के 10:30 बजा रही है और साथ ही साथ कर रही है ये इशारा कि वक्त है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म महबूब की मेहती से, गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में।

फिल्म सनम तेरी कसम से ये गीत आपने सुना गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में। आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला गीत गायक कलाकार मुकेश और हेमलता के स्वरों में फिल्म विश्वास से।

गायक कलाकार मुकेश और हेमलता के युगल स्वरों में गाए हुए फिल्म विश्वास के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म नीलकमल से, आवाज गायक कलाकार मोहम्मद रफी की।

कार्यक्रम के आखिर में आइए आपको सुनवाते हैं गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में गाए हुए फिल्म ताजमहल से ये गीत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitrakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर्ड बाय अपराजिता नायर।